एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक्स मत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। इस समय हमारे रेडियो की घड़ी में 5:58 हुए। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। तो आइए सुनते हैं ये गणेश वंदना।

श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा अब संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

0: विश्वास का सीधा संबंध हमारी आत्मा से होता है। विश्वास हमारे जीवन का आधार है, जिसके बिना संसार नहीं चल सकता। हमारे अविश्वासी मन का जब किसी महापुरुष से साक्षात्कार होता है, तो उसके सानिध्य में आने से हमारे भीतर खड़ी अविश्वास की दीवार स्वतः ही ध्वस्त हो जाती है। जिन व्यक्तियों के मन में अविश्वास रहता है, वो हमेशा भ्रम और संशय की स्थिति में जीते हैं। उनकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है और उन्हें सकारात्मक परिस्थितियां भी नकारात्मक नजर आने लगती हैं। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों का हृदय विश्वास से परिपूर्ण होता है, वे नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक परिणामों की आशा के साथ इस संसार के तमाम कष्टों का हंसकर सामना करते हुए सफलता के सोपान तय करते हैं। अगर व्यक्ति के भीतर दिल भर भी विश्वास है, तो संसार की कोई भी ताकत उसका मार्ग रोक नहीं सकती और उसके लिए दुर्गम मार्ग भी सुगम हो जाता है। एक बार तेज तूफानी बारिश में दो मित्र बुरी तरह फंस गए। पहले मित्र ने घोर निराशा भरे सुर में कहा, ऐसा लगता है मानो प्रलय की घड़ी आ पहुंची है, ये बारिश रुकेगी भी या नहीं। इस पर दूसरे मित्र ने उन्हें धीरज बंधाते हुए पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि मित्र, इस अस्थाई और नश्वर संसार में भला कौन सी चीज स्थाई रही है? कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति नहीं, ऐसी दुखद आपदा नहीं जिसका अंत संभव न हो। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ डटे रहो, जिस गति से बारिश शुरू हुई है उसी गति से थम भी जाएगी। बस फिर क्या था, दूसरे मित्र का विश्वास रंग लाया और देखते ही देखते तूफानी बारिश थम गई। आसमान पर छाए काले बादल छंट गए और दोनों मित्रों ने आगे की यात्रा निर्बाध रूप से शुरू की। व्यक्ति का विश्वास असंभव को भी किस प्रकार संभव कर देता है, इसे हम इस उदाहरण द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। जब लंकापति रावण ने प्रभु श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा था, तब उसके पास अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा और भारी सेना थी, जबकि उसके मुकाबले प्रभु श्री राम के पास केवल वानर सेना और विश्वास रूपी अचूक हथियार ही था। वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग को पार करने की चुनौती को प्रभु चरणों में पूर्ण विश्वास के बल पर ही स्वीकार किया और एक एक पत्थर पर प्रभु का नाम अंकित करके उसे समर्पण भाव के साथ समुद्र में फेंक कर सेतु तैयार किया और तमाम बाधाओं को पार कर वानर सेना ने महारथी रावण की लंका को ढहाने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि दिव्य आत्मा की संगत और उसके प्रति अगाध विश्वास की शक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। विश्वास से जहाँ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है, वहीं उसकी सृजनात्मक क्षमता भी बढ़ती है, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए अपने भीतर के पुरुषार्थ और आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि निरंतर प्रयास किया जाए। आज संसार में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, वे सब आविष्कारकों के स्वयं के प्रति अटल विश्वास का ही नतीजा है। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखकर किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान सुरेश वाडकर और साथियों के स्वर में।

विभीषण ने श्री राम की पवित्र भक्ति मांगी और वो उन्हें प्राप्त हो गई। श्री राम की वानर सेना के सामने समस्या थी, समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण का कहना है कि यद्यपि श्री रघुनाथ का एक ही वाण करोड़ों समुद्रों का जल सोख सकता है, तथापि नीति कहती है कि पहले जाकर

समुद्र से प्रार्थना की जाए। वो ऐसा उपाय बताएंगे जिससे रीछ और वानरों की अपरिमित सेना बिना किसी कठिनाई के सागर पार चली जाएगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान सुरेश वाटकर और साथियों के स्वर में एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंगी। कलाकार हैं राम चरण यादव और साथी।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकरंगनी कलाकार हैं रामचरण यादव और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रिन्नी में रामचरण यादव और उनके साथियों से बुंदेली लोकगीत। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत प्रधान और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत प्रधान और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बाल श्रम निषेध दिवस पर भोपाल की उपश्रम।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। 7:50 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे में जानिए कुछ जनउपयोगी सूचनाएं और जानकारियां। सुबह 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मनप्रसारित करेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही मॉर्निंग न्यूज। श्रोताओं, आज सुबह 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 9:00 से 10:00 तक विविध भारती मुंबई से मनप्रसारित करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। श्रोताओं, सुबह 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से मनप्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 10:05 पर हमारे स्टूडियो सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। सुबह 10:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे महिलाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज की बात का विषय होगा बाल मजदूरी रोकने में समाज और महिलाओं की जिम्मेदारी, साथ ही सखियों के पसंद के गीत और व्यंजन विधि में जानिए आम का पारंपरिक अचार बनाने की विधि और जानिए कल के आकर्षण। श्रोताओं, सुबह 11:00 से दोपहर 2:10 तक विविध भारती मुंबई से मनप्रसारित करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 2:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से मनप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार और 2:15 पर सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक विविध भारती मुंबई से मनप्रसारित करेंगे हम रंगारंग कार्यक्रम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत। शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए युवाओं का अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा बाल श्रम को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी। लोक रंग में हम चर्चा करेंगे आदिवासी कला और हस्तशिल्प पर, साथ ही सुनवाएंगे फिल्मी गीत। शाम 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम गौथली में सुनिए लता मंगेशकर के गाए हुए भक्ति गीत। शाम 6:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 6:50 पर कार्यक्रम सबरस में सुनिए गजल भजन कव्वाली और गैर फिल्मी गीत। शाम 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज की बात का विषय होगा बाल श्रम रोध दिवस पर, और साथ ही वार्ता में सोयाबीन की बुआई कतार में कूट और मेड विधि से करें खेती और श्रृंखला बातें खेती किसानी की और जानिए मौसम व बाजार भाव और समय रहते आपको सुनाएंगे लोकगीत। रात 8:00 हमारे स्टूडियो सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। रात 8:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम साज और आवाज। 8:45 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से मनप्रसारित करेंगे समाचार संध्या। 9:00 से रात 10:00 तक सुनिए विविध भारती मुंबई से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि 8:00 हमारे स्टूडियो सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत और रात 10:25 पर हमारे स्टूडियो सुनिए सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास और 1 और 11 आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग ईयू द्वारा उपलब्धि के आधार पर आप तक पहुंचाई जाएगी। रात 11:00 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से मनप्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और रात्रि 11:10 पर हमारे आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा होगी। तो ये थे आज के प्रसारित और अनप्रसारित वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार, प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: आकाशवाणी का साकार

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आज से शुरू, पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे इस दौरान देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी एनडीए के 198 नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर जोर देने का आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी को अनिवार्य बताया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल रात इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश की लोक कला, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर अलग अलग सभी देशों के साथ संबंध बनाते हुए एक दूसरे की अनुकूलता का लाभ ले, ऐसे समय में कृषि सेक्टर हमारा राष्ट्रीय एग्रीकल्चर ईयर हमने डिक्लेयर किया। 80 मंत्रियों का और कृषि से जुड़े हुए विद्वानों का एक बड़ा सम्मेलन है। कृषि एक तरह से व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। मैं सभी मंत्रियों का, राजनयिकों का, राजदूतों का सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
1: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत आयोजित इस 20 मिनट के सत्र में कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने केंद्र की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर दिया है और अब प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, पीएम मित्र पार्क, कौशल विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा की आपत्ति स्वीकार करते हुए 9 जून को उनका नामांकन रद्द कर दिया था। भाजपा का आरोप था कि नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। प्रदेश से राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कल रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी की 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला के आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में कल भोपाल में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विधेयक के प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, गुणवत्ता अनुसंधान और नियामकी सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। टीकमगढ़ जिले के अस्तोन गांव में कल 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्धसागर तालाब में नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में जा फंसे। मृतकों में 12 वर्षीय प्रिंस अहिरवार और 13-13 वर्षीय दीपेश व राज अहिरवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए तीनों परिवारों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के युवा अजय अहिरवार ने इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन में ब्रिक लेइंग स्किल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उनका चयन सितंबर 2026 में शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन और जून में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ग्लोबल स्किल चैलेंज के लिए भी किया गया है। राज्य कौशल विकास बोर्ड ने उनकी तैयारी के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक सुधारना चाहते थे। मंगोलिया के 10 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवास के बाद भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामौत गलायन के पवित्र अवशेष कल भोपाल के राजा भोज विमानतल पहुंचे। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर के गंदन मठ में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन अवशेषों के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 3 से 4 दिन की देरी से आएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून 17-18 जून को दस्तक देगा और अगले 10 से 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि का अनुमान है, जबकि भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में कल एनआरएलएम आजीविका भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा में 40 दिवसीय योग अभियान चल रहा है, जिसके तहत योग के महत्व, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित योगाभ्यास के लाभों की जानकारी दी जा रही है। खंडवा में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 6, 7 और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। आईटीआई इंदौर में एक निजी कंपनी ने तकनीशियन के 50 पदों के लिए युवाओं का चयन किया और केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उइके ने बैतूल में 18 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति से जनजाति समाज का सशक्तिकरण की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर, देहरादून में एनडीए की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई और 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आज से शुरू।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। तो आइए सुनते हैं फिल्म आप आए बाहर आई का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म आर पार का ये गीत।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका का ये गाना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से।

श्रोताओं, आइए आपको सुनते हैं, सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। फिल्म है आन मिलू सजना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म बैरात का ये गाना।

श्रोताओं, इस गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से अब संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इसे प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे सुबह सवेरे
0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ जनउपयोगी सूचनाएं और समय रहते आपको सुनवाते हैं देशगान। तो सबसे पहले ये जनउपयोगी सूचना, जल संगोष्ठी, जल स्रोत पूजन एवं दीपमाला कार्यक्रम आज 12 जून को। जन सामान्य को पारंपरिक जल स्रोतों के महत्व, उपयोगिता एवं संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विनायक शिशु मंदिर सिविल लाइन में 12 जून को शाम 6 बजे से जल संगोष्ठी, जल स्रोत पूजन एवं दीप माला कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बैतूल ने जिला समन्वय के कार्यक्रम में आम जन सभा में सहभागिता करने की अपील की है। संकल्प अभियान के तहत शिविर आज 12 जून को विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वितरण केंद्र शहर जोन 2 के द्वारा संपर्क अभियान के तहत विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए 12 जून को कोठी बाजार स्थित न्यू बैतूल हाई स्कूल थाना के बाजू में शिविर आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल जोन 2 के प्रबंधक ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे से आयोजित शिविर में क्लस्टर क्रमांक 3 के गांधी वार्ड क्रमांक 6 और तिलक वार्ड 9 के उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल जोन 1 के प्रबंधक ने बताया कि संकल्प अभियान के तहत 12 जून को 10 बजे से वृंदावन गार्डन आवासीय होटल के सामने गंज में शिविर आयोजित होगा, जिसमें क्लस्टर क्रमांक 5 के गणेश वार्ड क्रमांक 27 एवं राजेंद्र वार्ड क्रमांक 29 के उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से शिविर का लाभ लेने की अपील की है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का केंद्रीय मंत्री ने लिया जायजा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में 18 जून को प्रस्तावित आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम की तैयारियों का केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद बैतूल ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रोताओं, जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना नियंत्रण पर हुई विस्तृत समीक्षा। कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री राहत एवं राहवीर योजना के क्रियान्वयन, मोटर अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट के रेक्टिफिकेशन कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री राहत एवं राहवीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग योजना की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठा सकें। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी एवं नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नवीन दुर्घटना संभावित स्थलों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समन्वय से चिन्हांकन करने तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्धारित 40 मीटर एवं 75 मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने तथा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। अब आइए जानते हैं कुछ आपके स्वास्थ्य से संबंधित

0: जानकारी और कुछ जनोपयोगी की बातें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अंधविश्वास और साइंस, मतलब अंधविश्वास का मिथक या ये साइंस है। और आज हम चर्चा करते हैं तकिए के नीचे सेंधा नमक डालकर सोने से अच्छी नींद आती है, जाने ये अंधविश्वास है या साइंस है। अंधविश्वास और साइंस, हाल ही में फेमस वेलनेस एक्सपर्ट ल्यूक कोंटेनियो ने अपने एक इंस्टा पोस्ट में कुछ टिप्स शेयर किए जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से नींद बेहतर होती है। लेकिन क्या इस बात में कोई तथ्य है? जानते हैं इसके बारे में डॉक्टरों की क्या राय है। तकिए के नीचे सेंधा नमक रखकर सोना व्यक्ति की नींद को बेहतर बना सकता है, ऐसा हम नहीं बल्कि कई लोगों का मानना है। इसकी चर्चा वेलनेस कोच ल्यूक कोंटेनियो ने भी अपनी एक इंस्टा पोस्ट में की है। वेलनेस कोच ल्यूक कोंटेनियो ने अपने एक पोस्ट में बताया कि एक सूती कपड़े में या फिर रुमाल में सेंधा नमक डालकर तकिए के नीचे रखकर सोना आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ल्यूक कोंटेनियो कहते हैं कि भले ही इसके पीछे तथ्य नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया उन्होंने इसके फायदे जरूर महसूस किए। अब आइए जानते हैं कि क्या ये एक अंधविश्वास है, मिथक है, या डॉक्टरों की राय या साइंस की राय भी इसमें कुछ ऐसी ही है। डॉक्टर अनिमेश आर्य, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन श्री बालाजी एक्शन इंस्टीट्यूट दिल्ली, वो अपने लेख में इस मिथक के बारे में कुछ बातें बोलते हैं। डॉक्टर अनिमेश आर्य बताते हैं कि भारत में कुछ लोग मानते हैं कि सोने से पहले तकिए के नीचे एक चम्मच सेंधा नमक को रुमाल या सूती कपड़े में रखकर नींद लेने से नींद अच्छी आती है और शरीर डिटॉक्स होता है, और जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नमक को तकिए के नीचे रखने में शरीर या दिमाग पर कोई खास असर नहीं पड़ता और ना ही तो डिटॉक्सिफाई करता है और ना ही नींद को गहरा बनाता है। वास्तव में ये एक तरह के का घरेलू उपाय है। और डॉक्टर्स अनिमेश आर्य बताते हैं कि अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को सही करें। इसके लिए पहले तो आप अच्छी नींद सोएं, और अगर आपको समय पर नींद नहीं आती तो आप पहले सोने का समय तय करें और ठीक उसी समय रोज सोएं और जागें। इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें जो आपके थकान का काम करती है और नींद को बेहतर बनाती है। इसके अलावा सोने से पहले कैफीन और भारी भोजन से परहेज करें क्योंकि इससे अच्छी नींद नहीं आती। इसके अलावा अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो कैमोमाइल टी पिए जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के साथ मन को शांत करने में मददगार है। ये एंग्जाइटी को कम करने के लिए आपको एक बेहतर नींद देने में मदद करती है। इसके अलावा कई बार रात में सोने से पहले दूध में इलायची पाउडर मिलाकर पीना भी आपको बेहतर महसूस कर सकता है। इसके अलावा अच्छी नींद सोने के लिए कमरे को शांत रखें। कमरे में अंधेरा, नियमित नींद का पैटर्न और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे उपाय अधिक प्रभावशाली हैं। केवल नमक रखने या अन्य घरेलू मान्यताओं पर निर्भर रहने से नींद की गुणवत्ता नहीं सुधरती। इसलिए नींद से जुड़ी समस्याओं में उचित जीवन शैली और अगर जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर विकल्प है। रात में सोते समय इलायची खाने से क्या फायदा होगा? इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके मन को शांत करने के साथ बेहतर महसूस करने में मदद करता है। इसके अलावा ये आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए फील गुड हार्मोन्स को बढ़ावा देता है जिससे व्यक्ति बेहतर महसूस करता है। गहरी नींद सोने के पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें और लगभग 20 मिनट मेडिटेशन करें जो आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा कमरे में अंधेरा कर लें और आप किताब पढ़ सकते हैं जिससे आपको अच्छी नींद आ सकती है। विटामिन डी और विटामिन B6 की कमी से भी आपको नींद नहीं आएगी। ये आपको परेशान कर सकता है और ये शरीर में बेचैनी बढ़ा सकता है। जिससे नींद नहीं आती तो शरीर में विटामिन की कमी से बचें और मिथक से बचें और अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। तो आज सुबह सवेरे में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम प्रसारित करेंगे समाचार प्रभात।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर

0: पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीपफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री विनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
8: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
7: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमता

0: कलाकारों का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारत एक प्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

एफएमवेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। निजी प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: आईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राजेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है।
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में, इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह की नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
0: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग

0: पहचान है।
1: तो श्रोताओ ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने

को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: अपनाए खुशियाँ, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाए NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में विविध भारती मुंबई से मन प्रसारित करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

जब शोर भरी दुनिया में विविध भारती हो आपके संग, तो मिलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आज से तो हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: यह है विविध भारती
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में

दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता से लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने की जानी मानी ऐसी अदाकारा जो है बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी।
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहेंगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद।

0: जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई?
1: जी
0: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
1: अच्छा, उस समय
0: और
1: से आपका
0: मुझे वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है।
1: जी बिल्कुल।

9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत के कवाले में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी इस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही है। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थी। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही है श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब।
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निम्मी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बिमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन

0: कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा
0: अच्छा। जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी। दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पन्ना जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल बृहस्पति कुंड में बने नए ग्लास ब्रिज का क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा ने निरीक्षण किया। भगवान श्रीराम के वनगमन पथ और देव गुरु बृहस्पति की तपोस्थली के रूप में पूजनीय इस स्थल पर बना यह ग्लास ब्रिज पर्यटकों को प्रकृति का अनूठा नजारा दिखाएगा। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पन्ना को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के तहत फुलवारी से देवेंद्र नगर के बीच करीब 7 किलोमीटर लंबे नए रेल खंड का रेल संरक्षा आयुक्त ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड का ट्रायल भी किया गया। हालांकि खजुराहो पन्ना खंड में रूट डिजाइन में बदलाव के चलते 7 सुरंगें और 10 पुल बनाए जाएंगे, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ने की संभावना है। पन्ना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीते दिनों एक पेड़ माँ के नाम रूपाई को महाअभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अटल पार्क में और पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बनौली में पौधे लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी की उपस्थिति में 150 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत प्रदेश की नंबर 1 स्वावलंबी पंचायत बन गई है। ये पंचायत जल कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर और बाजार बैठकी कर से हर महीने करीब 3 लाख रूपये यानी सालाना 36 लाख रूपये

0: राजस्व अर्जित कर रही है। पंचायत ने मुख्य बाजार में डिवाइडर युक्त डामर सड़क और सुंदर लाइटिंग भी कराई है। तमोली ग्राम वन समिति के अध्यक्ष अजय चौरसिया की पक्षी संरक्षण की अनूठी पहल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने सूखी लौकी और प्लाईवुड से प्राकृतिक पक्षी घर तैयार किए हैं, जिसमें आज सैकड़ों पक्षी बसेरा कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को पर्यावरण प्रेमियों से खूब सराहना मिल रही है। शाहनगर तहसील के सामने कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते दिनों किया। तेंदुघाट बांध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के चार गांवों के किसानों को 8 साल से मुआवजा न मिलने पर यह प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार ने बताया कि भू अर्जन की फाइल जिला मुख्यालय भेज दी गई है और जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाएगा। अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बिहरपुरवा में मनरेगा कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच और ठेकेदार सहित 3 जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की है। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद बीडी शर्मा और विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाया। भाजपा नेता संजय नागाइच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुमर विधायक राजेश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर उषा परमार ने बीते दिनों पवई क्षेत्र का दौरा कर सब जेल, नवनिर्मित सिविल अस्पताल, कस्तूरबा कन्या छात्रावास और जनजाति छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया ने शाहनगर में सभी प्राचार्यों की आपात समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मानसून से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने के काम को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्री खरीद वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों को खरीफ मौसम में समन्वित खेती, धान की सीधी बुआई, जैव उर्वरकों के उपयोग और मोटे अनाज की खेती अपनाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने परंपरागत बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर और सोनोग्राफी सहित अन्य जांचें की गयी। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य समय पर पूरा न करने पर कलेक्टर उषा परमार ने 42 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के शासकीय कार्यालयों में AI टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में 45 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया
2: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत, और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आकाश श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए वे नगमे जिनके लिए भेजी है आपने अपनी प्यार भरी फरमाइश, और आप ही की इस फरमाइश को हम हमारे स्टूडियो से पहुंचाएंगे आपके रेडियो सेट तक। तो चलिए फरमाइशों के इस कार्यक्रम के सिलसिले को शुरू करते हैं, और सबसे पहली फरमाइश हम आप तक पहुंचाते हैं। ये फरमाइश हमने ली है दंतरेगी छत्तीसगढ़ से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा एवं समस्त वर्मा परिवार। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में फिल्म बातों बातों में का ये गाना, और इसी गाने को सुनना चाहे छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा एवं समस्त वर्मा परिवार। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं फिल्म है बातों बातों में।
3: सबके कदम देखो रंग रंग।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, अगली फरमाइश हमने ली है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कलाकार के इस गीत के लिए, और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर एवं समस्त ठाकुर परिवार। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोम ने, वैष्णवी चंचल, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा सेरे और उनके बहुत सारे साथी। तो लीजिए, आप सभी की फरमाइश पर आप ही के आसपास फिल्म कलाकार का ये गाना।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। श्रोताओं, यदि आप भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज तक आपने अपनी फरमाइश हम तक नहीं पहुंचाई है और आप अपनी फरमाइश का गीत हमारे इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं, तो आप अपनी फरमाइश हम तक कैसे पहुंचाएंगे? हम आपको इसके दो तरीके बता देते हैं। आप दो तरीकों से अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है पोस्टकार्ड के माध्यम से आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाइए। तो यदि आप पोस्टकार्ड पर लिखकर अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं तो कृपया आप हमारा पता लिख लें। तो हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल, पिन है 460001। एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका है व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। तो कृपया हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 7141234722। एक बार फिर से नंबर लिखें, 7141234722। तो दूसरा तरीका यह है, आप इन दोनों माध्यमों से अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाइए। साथ में आपका नाम, आपके परिवार के सदस्यों का नाम, आपके दोस्तों, साथियों, पड़ोसियों का नाम जिन्होंने आपकी भेजी हुई फरमाइश को पसंद किया है, लिखकर जरूर भेजे ताकि हम अपने इस फरमाइशी कार्यक्रम में उन सभी का नाम भी शामिल कर सकें और आपकी पसंद का गीत भी आप तक पहुंचाते रहें। तो देखिए, अब आपको इसकी जानकारी लग गई है तो हमें भी विश्वास है कि आप हमें अपनी फरमाइश जरूर भेजेंगे। आपके खतों का, आपकी फरमाइश का हमें इंतजार रहेगा। और अपनी फरमाइश भेजने के साथ साथ आप ये लिखना ना भूलें कि आकाशवाणी बैतूल द्वारा और दूसरे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा हम बता दें कि हमारे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे से भी आता है, तो उसमें भी आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह में एक दो दिन हम इसके बाद जो कार्यक्रम आने वाला है 10:30 पर महिला जगत, इसमें भी फरमाइशी गीत आप तक पहुंचाते हैं जो सखियों की पसंद के नाम से है। तो आप इसी पते पर कार्यक्रम महिला जगत लिखकर और हमारे यहाँ का पता लिखकर या ये व्हाट्सएप नंबर जो हमने आप तक पहुंचाया उस पर इस कार्यक्रम में भी महिला जगत में भी अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। तो चलिए अब फरमाइशों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगली फरमाइश लेते हैं। ये फरमाइश हमें भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान साहिबा, मुस्तफा खान, आफिया खान, राव भाई, शहीद भाई एवं उनके बहुत सारे साथी, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर एवं उनके बहुत सारे साथी, आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दूसरा आदमी के इस गीत के लिए। और इसी गीत को सुनना चाहा है आमला ग्राम अधरिया से वीरे झाड़े, योगे झाड़े, चित्रे झाड़े, नवदीप, छिंदवाड़ा नेर ग्राम देवरदा से बलराम वर्मा, देव, जानकी रामा एवं उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत आपके ही रेडियो।

श्रोताओं, इस फरमाइशी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत अब संपन्न होता है। तो आकाश श्रीवास्तव को दीजिए विदा अगली मुलाकात के वादे के साथ। नमस्कार। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत।

जिनके गरीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। ये चंद लाइंस आपके नाम, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज, पर उससे पहले बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, क्योंकि आज हम सुनवाने वाले हैं आप ही के भेजे हुए फरमाइशी गीतों को श्रृंखला सखियों की पसंद में। तो बने रहिए आपकी अपनी रेडियो सखी अलका के साथ। करते हैं शुरुआत आज की बात के साथ, बाल मजदूरी रोकने में समाज और महिलाओं की जिम्मेदारी। शुदा बचपन की हंसी सबसे बड़ी दौलत होती है और एक माँ हर बच्चे के लिए पूरा संसार। वहीं अगर कोई बच्चा जब स्कूल की घंटी की जगह काम के पुकार सुनने लगे, जब उसके हाथों में किताबों की जगह जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए, तो वो खूबसूरत बचपन कहीं खो सा जाता है। चूंकि आज हम मना रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो हमें यही याद दिलाता है कि बच्चों को काम नहीं प्रगति के अवसर चाहिए, डांट नहीं दुलार चाहिए, और सबसे बड़ी बात शिक्षा और प्यार भरा बचपन चाहिए। एक महिला, चाहे वो माँ हो, बहन हो या शिक्षिका या फिर पड़ोस की कोई सजग नागरिक ही क्यों ना हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे का भविष्य संवारने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। यदि हम अपने आसपास किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखें तो संवेदनशील बने, उस बच्चे को और उसके माता पिता और परिवार वालों को शिक्षा का महत्व बताएं, उन्हें शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दें, क्योंकि एक बार बच्चा मजदूरी करना शुरू कर देगा तो सारा जीवन फिर वो वही करते रहेगा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में कोई और अच्छी नौकरी तो मिलना असंभव है। इसलिए बचपन में उनसे शिक्षा का अधिकार न छीने, यही एक महिला और समाज की खास जिम्मेदारी है। इसी तरह पूरे समाज को भी ये समझना होगा कि किसी बच्चे से काम करवाना, चाहे वो किसी के घर में हो, दुकान में हो या होटल में, उसका बचपन और पढ़ाई छीनने के समान है। इसलिए बच्चों को मजदूर नहीं विद्यार्थी के रूप में देखें। घरों और प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिकों को काम पर न रखें, ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। सरकार द्वारा भी निशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्तियां और कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बच्चों को

शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु ये सब तभी संभव है जब समाज और परिवार भी अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि फूलों से भी नाजुक है ये बचपन। इन्हें संघर्ष नहीं मुस्कुराहटें दीजिए, जो कल की तकदीर लिखेंगे वो नन्हे हाथों में किताबें दीजिए। तो ये तो थी आज की हमारी खास बात आप सभी के साथ। मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: कार्ड, टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और श्रोताओं, आप शुरू करते हैं हमारी श्रृंखला सखियों की पसंद, और शामिल करते हैं पहला व्हाट्सएप मैसेज जो आया है नागपुर महाराष्ट्र से। लिखने वाली हमारी सखियां हैं आशा, मंजू और पायल। ये लिखती हैं कि दूसरों का ख्याल रखते रखते अपने शौक और अपनी खुशियों को मत भूलिए। जीवन में थोड़ा समय अपने लिए निकालना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। ये बात सच है आशा ताई कि जब तक हम अपना ध्यान अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे या हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे और ना ही उन्हें खुश रख पाएंगे। मैसेज भेजने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ आपने सुनना चाहा है फिल्म गहरा दाग का मीठा सा ये डुएट सॉन्ग आशा जी और रफी जी की मधुर आवाजों में। शकील बदायमी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है रवि जी ने।

आपने ट्यून किया है बैतूल एफएम। आइए पढ़ते हैं ये दूसरा व्हाट्सएप मैसेज जो हमें प्राप्त हुआ है इंदौर से। लिखने वाली सखियां हैं जूही और कनिका। ये लिखती हैं कि स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को ही लाभ है। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है जूही जी, जीवन में खुश रहने का आसान तरीका यही है। हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं और हर बात का बुरा मानना भी जरूरी नहीं। इसी प्यारे से सुविचार के साथ इन्होंने फरमाइश की है फिल्म देवर के इस प्यारे से गीत को सुनने की। लता जी की आवाज में गाए इस गीत को शब्द दिए हैं आनंद बख्शी ने और इन शब्दों को संगीत में पिरोया है रोशन साहब ने। सुनते हैं ये गीत।

श्रृंखला में अगला संदेश पढ़ने से पहले आइए आपको ले चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यंजन विधि में। सखियो, गर्मी का मौसम हो और व्यंजन विधि में आम के बने अचार की बात ना हो तो बड़ा अधूरा सा लगता है। आम का अचार यानी भोजन का आनंद। चलिए पारंपरिक रूप से आम के अचार की विधि जानते हैं हमारे सेगमेंट व्यंजन विधि में। इसके लिए सामग्री नोट कर लीजिए। अगर 1 किलो आम हम ले रहे हैं तो इसके लिए 0.5 लीटर तेल हमें लग जाएगा। सरसों या फिर कोई और भी जो आप पसंद करें वो ले सकते हैं। 100 ग्राम नमक, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम पीली सरसों, 25 ग्राम मेथी, इसके साथ 3 बड़े चम्मच हल्दी और मिर्ची पाउडर या फिर जितना तीखा आप पसंद करें उस हिसाब से, 1 छोटा चम्मच हींग और 25 ग्राम कलौंजी भी जरूर शामिल।

दाम हम ले रहे हैं तो इसके लिए आधा लीटर तेल हमें लग जाएगा। सरसों या फिर कोई और भी जो आप पसंद करें वो ले सकते हैं। 100 ग्राम नमक, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम पीली सरसों, 25 ग्राम मेथी, इसके साथ 3 बड़े चम्मच हल्दी और मिर्ची पाउडर या फिर जितना तीखा आप पसंद करें उस हिसाब से। एक छोटा चम्मच हींग और 25 ग्राम कलौंजी भी जरूर शामिल करें, इससे स्वाद बड़ा अच्छा आता है। अब बनाना कैसे है जानते हैं। कच्चे आम अच्छे से धोकर पोंछकर या सुखाकर छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें हल्दी और नमक लगाकर 5-6 घंटे के लिए ढककर रख दें। सौंफ, मेथी, राई को हल्का दरदरा पीस लें। पहले थोड़ा सा तेल अलग से गर्म करें, फिर जब हल्का सा गर्म रहे तब हींग, कलौंजी और जो दरदरा मसाला हमने पीस के रखा था वो सब मिलाएं और इसे आम के टुकड़ों में अच्छे से मिक्स कर दें। अब बाकी का तेल अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा करें, इसमें मिला दें और सूखी साफ कांच की बरनी में इसे भरकर रख दें। इसे 4-5 दिन धूप में रखें और रोज एक एक बार चम्मच से चलाते रहें। अब ये खाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा विनेगर भी अगर हम इसमें चाहें तो मिला दें तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और चलिए, इतनी मेहनत से आम का अचार बनाया है हमने तो अब मनोरंजन भी जरूरी है। तो बढ़ते हैं अपनी सखियों की पसंद श्रृंखला में और पढ़ने जा रही हूँ मैं ये अगला व्हाट्सएप मैसेज जो हमें लिख भेजा है हमारी पुणे महाराष्ट्र वाली इन सभी सखियों ने। इनके नाम है सविता, स्वाति, हिमांगी, वैभवी, लता और अंजू। इन सभी ने एक बड़ी प्यारी सी सलाह हमें दी है। इस सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति को फोन कीजिए जिससे बात किए हुए बहुत समय हो गया हो आपको। हो सकता है आपकी आवाज ही उसके चेहरे की मुस्कान बन जाए। क्या बात है सविता जी, और सभी सखियां आपकी इसी सकारात्मक सलाह के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और मैं भी घर जाकर के बिल्कुल यही करने वाली हूँ। तो आप सभी ने सुनना चाहा है आपकी परछाइयां फिल्म का ये प्यारा सा गीत रफी जी के मखमली आवाज में।

श्रृंखला सखियों की पसंद में अगर आप भी सुनना चाहते हैं आपकी अपनी पसंद का कोई गीत या भेजना चाहते हैं कार्यक्रम संबंधी कोई सुझाव या शिकायत या फिर साझा करना चाहते हैं कोई सुविचार तो इस पते को नोट कर लीजिए। आप हमें पत्र लिख सकते हैं इस पते पर कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल पिन कोड है 460001। और अगर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप फरमाइश भेजते हैं तो इस फोन नंबर को सेव कर लीजिए 7141234722। हमें आपके पत्रों और मैसेजेस का इंतजार रहेगा। चलिए अब शामिल करते हैं अगला व्हाट्सएप संदेश जिसे भेजा है भोपाल से बबीता राधिका और कांची ने। ये लिखती हैं, मोबाइल में हजारों नंबर सेव होने से रिश्ते मजबूत नहीं होते बल्कि समय समय पर हालचाल पूछ लेने से अपनापन बना रहता है। बहुत सुंदर बात कही है आपने बबीता जी। इसी के साथ ये सुनना चाहते हैं वो कौन थी फिल्म का ये प्यारा सा युगल गीत लता जी और महेंद्र कपूर की आवाजों में सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, हम भी आपको छोड़कर कहाँ जाएं बताइए, क्योंकि एक दिन भी हम और हमारी सखियां आपसे मिले बिना नहीं रह पाती हैं और रोज सुबह 10:30 बजते ही आ जाती हैं आपसे ढेर सारी बातें करने। इसी सिलसिले में कल आपके साथ होंगी हमारे रेडियो सखी कांचन पात्रीकर, जो रक्तदान जागरूकता के बारे में आपसे बात करेंगी और मिलवाएंगी जिला चिकित्सालय में पदस्थ ब्लड बैंक ऑफिसर डॉक्टर अंकिता सीते से। सुनिएगा जरूर कार्यक्रम महिला जगत। अब लेते हैं प्रोग्राम का आखिरी संदेश जो हमें मिला है कोठी बाजार बैतूल से। इन सभी सखियों के नाम हैं पूजा, श्रेया, श्रुति, शैल कुमारी, शिखा, शर्मिला, रिद्धि, सिद्धि, सरोज, मनीषा, उषा और आभा। ये लिखती हैं, महिला जगत कार्यक्रम हमें बेहद पसंद है, बड़े शौक से हम ये प्रोग्राम

हमसे फिर मिलोगे इस बात का वादा कीजिए, और अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, तो फिर होगी मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपनी रेडियो सखी अलका को दें इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत, एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र। अब से कुछ ही देर बाद विविध भारती मुंबई से मन प्रसारित करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

ताजमहल फिल्म की कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, तर्ज रोशन की थी। आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली के स्वर में एक गीत। ये रचना है महादेवी वर्मा की लिखी हुई, जयदेव ने संगीत तैयार किया। फिल्म का नाम त्रिकोण का चौथा कोण।

0: पंकज उधास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी, कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहर

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर। मना रहे हैं स्मृति उत्सव। सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी की बोल है, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम की आवाज, कलाम सरदार अंजुम का।

0: कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में

0: कुलतारन वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री नितू प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तारी जमीन पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

जमाने को दिखाना है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में। संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले खाती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गलियों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा है इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से जरा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा। जिंदगी में शायद साथ इतना ही था, और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ खास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है, यहाँ पर कहीं संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए। क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझकर रखा है कि देखिए आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं। उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है, जरा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी आपने। सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी, या फिर कोई गाना, या फिर कोई अपनी जिंदगी की कोई घटना, जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी, और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं।

एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया लिखिए फटाफट, आपने किसी ने नहीं लिखा और न ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं सीधे दिल से जुड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्म पत्नी है, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है। एक ने लिखा है किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो। एक श्रोता ने लिखा है कभी कभी दिल से दिल किसी का शुक्रिया अदा करना भी कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं रोजाना। एक श्रोता ने लिखा है मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। एक श्रोता ने लिखा है विविध भारती के नाम से कई सारी साइट है, नए लोगों को बहुत परेशान करती है। तो देखिये यहाँ पर जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा लिखा है और ब्लू टिक है, विविध भारती की जो असली प्रोफाइल है, तो वहां जाके देख सकते हैं। और इस समय जहां से आपको ये सुनने को मिल रही है ये बात, जहां से टिप्पणियां मिल रही हैं, वहां पर आप आइए। और विविध भारती की लिंक भी है जो जिसे आप देखकर वहां पर पहुंच सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल है वो नकली प्रोफाइल है, याद रखियेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहां यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएं जन्म लेती हैं। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। एक श्रोता ने लिखा है वही वाह, गानों की तो लंबी फेहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफर इतना लंबा हो जाएगा कि कभी खत्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई हमने आपसे कहानी पूछी थी, जरा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफर में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रही, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को, जितने उनके चाहने वाले हैं। सचमुच एक अलग तरह की आवाज थी। अब हम आपकी टिप्पणियों पर आते हैं। श्रोता ने लिखा है कि आजकल प्रेम की जगह मोबाइल ने ले ली है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, मोबाइल में रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है आपके लिए। वैसे एक इस गाने में ये लाइन भी आती है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे पहचान है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कब किससे पहचान हुई, कौन सी पहचान रिश्ते में बदल गई, ये हमारा सवाल है। कोई दोस्त मित्र प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या भाई बहन का रिश्ता बन गया एक पहचान से। कई बार हम कहीं जाते हैं घूमने, कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, वहां मुलाकात होती है, तो कुछ रिश्ते बन जाते हैं। कई बार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का। तो आप ये भी बता सकते हैं अपनी यादें साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में नानी जी सुनाती थी कहानी, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, खूब लंबी लंबी कहानियां। दादी और दादाजी बहुत प्यार करते थे। एक श्रोता ने लिखा है, नवीं कक्षा में था जब मैं एनसीसी कैंप गया था, रोजाना ही जूनियर से कुछ न कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे। लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई, बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया, तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई, और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी, लेकिन कुछ न कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या न माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है, और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए। तो देखा कि उनमें ये शब्द है, तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म है भरोसा, कलाकारों के नाम जरा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही है, कौन अभिनेत्री गा रही है ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका है लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं, अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

दूसरे फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था। और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना, अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारिख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहलियां भी शामिल है कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतजार। और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं, बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने। नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहे आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद। हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें उस एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहेंगे भी कि ये वाला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहन में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai की टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

यादव के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहां नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहां से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशा है रगमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, जरा ये भी तो अंदाजा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहां से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहां से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका है गुरुदत्त आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब जरा कुछ और टिप्पणियां भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ाने में मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविजन पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूं हाँ पर अफसोस वो अब नहीं है। ओह, एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान

कन्यादान फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिक और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं, कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खत्म है, हुई जो मोहब्बत दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो, एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभाल

0: मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए। गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था, और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं। हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया, इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने, गैंगलर फिल्म का। दिलाज शायर है गवाज नगमा, तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन जरा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गवाज नगमा है शबीर गजल है सनम,
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी हो लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है, बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सबने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल

वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियां याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहां हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी जबान से मॉड्यूलेट करके सुरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल धानवी की पंक्तियां प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती है कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। वही प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीरा बाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटते प्रेम किए दुखोए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है। फिल्म बड़ा आदमी, और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।

बाद में फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया। प्रेम भवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अशकों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतजार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं, प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

गीतकार एसएच बिहारी आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है शर्मिला टैगोर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है। जब चलने का समय होता है तब पूछती है कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में जरूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है। बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है, तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हूँ, साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, मुकेश की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो जरूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मजा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है। यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आज के प्रोग्राम का सफर बस इतना ही। सुरीला सफर का यह सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: अढ़ाई साल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठी चार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपए का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दासगुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहूलुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के

0: पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
0: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्र पाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक दम बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा।
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठी चार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, I'll be safe here with you. Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जनसमुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
4: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया। अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
4: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
5: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
2: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज

0: शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया, हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
1: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इन मसौदा नियमों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। जनता इन पर अपने विचार, टिप्पणियां और सुझाव 27 मई तक सरकार को भेज सकती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानून प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रहलाद जोशी ने आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। प्रदेश में मॉनसून 17 से 18 जून के बीच राज्य के दक्षिणी जिलों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पन्नी जिले में नेशनल हाईवे 39 पर बीती रात एक सड़क हादसे में अजयगढ़ थाने में तैनात 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी के कोलारस में कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वेयरहाउस परिसर में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर FIR दर्ज की गई है। भोपाल में आधी रात पटाखा दुकान में भड़की भीषण आग पर दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगे और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
3: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और इन दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजी 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन

0: सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ है जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सर्मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया।

0: का मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: विविध भारतों पर बहती है सुरों की सरिता। घूमती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज।

मुकेश की आवाज में यह था तीसरी कसम फिल्म का गाना और रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुनिए रोशन के बनाए तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूली बिसरी गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द दिलिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया धर दिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार में।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहंदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र है। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को

0: इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस एक घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा। आप बताइए आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तैयारी कर रही थी।
0: जी हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी दी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: है।
0: जी तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी? जी
1: चांदनी जी बोल रही हूँ,
0: चांदनी जी,
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है चांदनी जी, क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी। मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी, क्या बात है?
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी, मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा
1: तो बेटे हैं मैम, एक लड़की है,
0: अच्छा
1: गुड़िया
0: क्या
1: है
0: बात है?
1: जी। मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब उस शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों के गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी के साथ लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो, बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले,
0: जी
1: खाकी
0: जी
1: कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे, उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे, उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए, तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्चे अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी।
1: जी
0: आज
1: जी
0: बताइए, आप
1: जी
0: कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान, गाने के बोल है
0: मैं ना भूलूंगी।
1: जी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं झांसी से। हाँ
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: झांसी।
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो रहे हैं। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है। और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे,
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे। हाँ
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए
1: हाँ,
0: आप
1: तुम
0: ही
1: बिन बिन
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी, जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ।

0: बताइए।
1: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
0: ऐसे तो साधारण रहनी हूँ पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
1: भाई देखिए गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: मैं वास्तव में भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
1: जी तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
0: हाँ
1: जी सुनाइए।
0: अपनी रचना सुनाती हूँ
1: जी।
0: नमनाक हो चली की पुरवाई, नमनाक हो चली की पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई, जब से तुमको नाखुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, दुकान पे ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
1: बहुत सुंदर कविता। आप कहती हैं साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनाए आपको?
0: सरस्वती चंद्र का छोड़ दे साधु दुनिया किसी के लिए।
1: जी बहुत सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती केला सुतार बात कर रही हूँ, दिल्ली से। हाँ
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है,
0: क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मर्ज की हूँ। और ये इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, फैक्ट्री चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती चौक है, रसवंती गन्ने
0: जी
1: की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मुझसे जो है वो काम भी रहते यहाँ पे।
0: जी जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल, वो छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई नहीं थी, ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है, तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू, तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: बहुत बहुत
0: करते थे?
1: हाँ, ये शाम भी कर दी ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर पकड़ के हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते
0: हाँ
1: थे।
0: ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी। आपसे बात करके हमें
1: बहुत बहुत।
0: बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज बताइए आप
1: हाँ
0: कौन सा गीत
1: बोलिए।
0: सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम उसका नई जंग है, उनको पसंद
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं।
1: बहुत पसंद है। यस
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: जी तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है, घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं, कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी, तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे

0: लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
1: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
0: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
0: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
1: जी
0: इसका शीर्षक है आशियाना।
1: आशियाना शीर्षक।
0: जी, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे से मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार की सीमित में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सकंदरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूला, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं से खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगले कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे नर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम, मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में,
0: जी
1: जाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं?
1: बनाते ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर दे बनाते।
0: जी तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेते हैं?
1: लोग से घर के जैसे सब लोग जॉब के रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो हम लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश का ये गाना सुनना है,
0: बिल्कुल
1: दीपक चोपड़ा।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं हम डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा

0: टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं वहीं पर रहती हूँ।
1: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगे आप?
0: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
1: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में, करती हैं किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
1: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे आपका ट्रांसफर हुआ है, किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
0: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
1: अरे
0: तो
1: वाह,
0: इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
1: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना,
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
0: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
1: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
0: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
1: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
0: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है
1: बहुत अच्छी बात है।
0: इसलिए।
1: तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
0: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में तो पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
1: जी
0: होगा,
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी।
0: इसीलिए

0: इसीलिए जल से उपचार करके हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
1: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
0: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, वो जल्दी भी उपचार हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए और अब जब आप वापस से अपने काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहेगी सुनना चाहती हूँ।
1: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम,
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मनकरी बोल रही सालदाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये
1: जी।
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ, गाने के बोले दिल का सुनना था तारा ना लेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

कि आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपनी दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारे इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोरी ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा महेश्वरी का नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: भारती
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता, लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार लूही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसके

नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेटने छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे, आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। वो वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने नैनी सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपती हुई नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थी, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटी लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थाम कर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी है। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहाँ रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाती हुई अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में।
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं।
1: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
0: तकरीबन 40% पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम कहीं नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वही पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई, दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे बुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला,
1: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती।
0: पर बताना तो पड़ेगा ना?
1: पता नहीं।
0: उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है,
1: तुम परेशान मत हो पल्लू।
0: प्रेम? ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत,

0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी, लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ, पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ती ही पल्लवी चौंकी। उफ, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा।
1: पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए।
0: एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
1: हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में

आधी रात होने को है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है, कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है, पूरे घर में अंधेरा है, लेकिन पल्लवी के कमरों में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नींद दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी रोटी ले आऊंगी, कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि लाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मामा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मामा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आँख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आँखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी, चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहाँ दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसी बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही न हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी के दोनों पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे

और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने हिम्मत करके बात की। हेलो। हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने घर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हूँ? मेकअप। हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हूँ? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरे भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा? बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो। आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जींस और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जूझ रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवान दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

0: थोड़ी देर बाद अंजलि और अरुण हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरुण ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरुण ने बात छेड़ी।
1: क्या बताऊं?
0: कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरुण की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखी उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरुण ने कहा,
1: और
0: अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरुण ने छेड़ जारी रखी।
1: और
0: हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म की हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था।
1: तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा?
0: अरविंद के पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रही। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा,
1: लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ।
0: क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है।
1: बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई।
0: अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा,
1: हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है।
0: तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही

थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो, प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, ये तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बात

आए कि उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से निपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थी और मम्मा तो थी। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसकी काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ते पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद की इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेनू देखने लगी। क्या मंगाऊ मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भाग गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो।

0: अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा?
1: मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करते हुए बोली।
0: बस ठीक?
1: हाँ भाई ठीक
0: बस। अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या?
1: हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा।
0: दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजर गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए।

0: जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ के एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दूर दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो?
1: ठीक हूँ।
0: परेशान हूँ क्या?
1: हाँ थोड़ा परेशान हूँ।
0: बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा।
1: नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी।
0: अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ न कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहाँ उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे?
1: मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ।
0: फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया।
1: नहीं आई बस।
0: अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे।
1: क्या?
0: मिलकर बताती हूँ।
1: अरे बताना।
0: नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा।
1: पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे,
0: अंजलि झुंझला उठी।
1: अरविंद के बारे में।
0: अरविंद?
1: हाँ।
0: क्या हुआ अरविंद को?
1: कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली।
0: अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में?
1: आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में होगी।
0: मैं आऊँ यूनिवर्सिटी?
1: नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया।
0: फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था, हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा,
1: तुम मेरा इंतजार मत किया करो।
0: अरे तुम फोन भी?
1: लेकिन
0: अंजलि कुछ और कहती उसके पहले अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
1: ये क्या कह रहे हो और क्यों?
0: जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गई।
1: क्योंकि यही सच है,
0: अंजलि अरविंद को आज भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसी बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है,
1: बुआ

0: मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मामा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई, एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला।

हिम्मतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान दबही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आदि से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो। सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

होना भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भरा किस तरह छुपाएं। साजिदी पे एक तरह दिल छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल छेड़ा है।

आंचल ते घटाओं की गुलाबी रंगत प्यारी वो पल जब बादो सबा ने कुछ कहा। दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती है, कुछ तूफान दिल मचलते हैं, ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना। तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, आज की बात में हमारा आज का विषय है सिर्फ समाज नहीं बल्कि जो उस पूरे देश को झकझोर के रखता है वो है बाल श्रम। दोस्तों, जरा एक पल सोचिए, जब एक बच्चा स्कूल बैग लेकर हंसते हुए स्कूल जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसी उम्र का बच्चा किसी दुकान, ढाबे या फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। एक के हाथ में किताबें हैं और दूसरे के हाथ में बोझ। क्या यही बचपन की बराबरी है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। बचपन वो समय होता है जब बच्चा सीखता है, खेलता है और सपने देखता है। लेकिन जब उसी उम्र में उसे काम पर लगा दिया जाता है, तो उसके अपने सपने धीरे-धीरे टूटने लगते हैं। बाल श्रम सिर्फ काम करवाना नहीं है, बल्कि एक बच्चे के भविष्य को रोक देना है। आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई की जगह काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे गरीबी की वजह से मजबूर हैं और कुछ हालात मजबूर कर देते हैं, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, एक मासूम बच्चे से उसका बचपन छीन लेना कभी सही नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाल श्रम सिर्फ गरीब परिवारों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम किसी दुकान पर एक छोटे बच्चे को काम करते देखते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी इस समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी चुप्पी भी एक तरह की सहमति बन जाती है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो हमें आगे आना होगा। अगर कोई बच्चा काम करता दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें, उसके परिवार को प्यार से समझाने की कोशिश करें, जरूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन या संबंधित अधिकारियों को सूचना दें और बच्चों की शिक्षा की ओर जोड़ने में मदद करें। सरकार ने बाल श्रम रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब समाज खुद जागरूक होगा। अगर हर इंसान एक बच्चे की मदद करे, तो कितने बच्चों का भविष्य बदल सकता है। एक बच्चा जो आज मजदूरी कर रहा है, वही कल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या कलाकार बन सकता है। लेकिन उसे मौका देना हमारी जिम्मेदारी है। बचपन कोई मजदूरी करने की उम्र नहीं होती, बचपन तो मुस्कुराने, खेलने और सपने देखने की उम्र होती है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम किसी भी बच्चे का बचपन छीनने नहीं देंगे, क्योंकि अगर बचपन सुरक्षित है, तो भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की बात में इतना ही, लेकिन अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत। इसी के साथ फिर हम बढ़ेंगे आगे अगले क्रम की ओर।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में अब बारी है इनसे मिलिए की। इनसे मिलिए में आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर प्रमोद मालवी से।
1: के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी, जो एमबीबीएस एवं एमडी मेडिसिन हैं। इनके पास माँ एवं बच्चे, साथ ही मानसिक रोग, एंडोक्राइन रोग में अलग-अलग डिप्लोमा भी है। स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज आप हमारे श्रोताओं को गर्मी से बचाव तथा गर्मी के बाद होने वाली बीमारियों से बचने के उपायों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी, आकाशवाणी के इनसे मिले क्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
2: श्रोताओं को मेरा नमस्कार। गर्मी लू से भरी होती है और बरसात कीचड़ और अन्य परेशानियों से भरा होता है। आइए हम जानते हैं कि इसका निवारण कैसे करें।
1: डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि सभी बोलते हैं कि गर्मियों में लू लग जाती है, तो आप हमारे युवा श्रोताओं को बताइए कि आखिर ये लू क्या होती है?
2: बैतूल इतना गर्म नहीं होता कि वहाँ पर जो वास्तविक लू है वो लगे। जो भी हम लोगों को यहाँ पर होता है उसको हम लोग हीट एग्जॉशन बोलते हैं। वास्तविक लू में तो मरीज का बुखार एकदम से 106 के आसपास पहुँच जाता है, उसको पसीना आना बंद हो जाता है, उसको चक्कर मिर्गी जैसा आने लगता है, वो बेहोशी की तरफ जाने लगता है। यदि वास्तविक लू किसी को लगी है और उसको तुरंत बर्फीले पानी में नहीं गले तक डुबाया गया तो संभव है कि जल्दी ही उस मरीज की मौत हो जाए। हम लोगों को जो लू लगती है उसे हीट एग्जॉशन बोलते हैं। ये एक लू का हल्का प्रकार है। इस लू में नींद आना, कमजोरी लगना, जी मचलाना जैसे लक्षण आते हैं और शरीर गरम गरम सा हो जाता है। ये लू पसीना लेकर आती है और बैतूल में लगभग हीट एग्जॉशन ही होता है।

0: लगभग किसी को लू नहीं लगती।
1: डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी, आप हमारे युवा श्रोताओं को बताइए कि लू क्या घर के अंदर भी लग सकती है?
0: लू दो प्रकार की होती है, एक तो हम धूप में निकलते हैं उसके कारण जो लू लगती है उसको हम बाहर वाली लू बोलते हैं, और जो घर के अंदर बैठे बैठे लू लगती है उसको हम घर के अंदर वाले लू बोलते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि घर के अंदर बैठे भी लू लग सकती है क्या? हाँ, ये सही है। यदि आप गर्मी के पास बैठे हो, चूल्हे के पास बैठे हो या टीन के नीचे बैठे हो तो घर के अंदर वाली लू लग सकती है, और उसमें भी यही लक्षण होते हैं जो बाहर वाली लू में होते हैं।
1: जी डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी, आप हमारे युवा श्रोताओं को ये बताइए कि जो बाहर वाली लू लगती है उससे कैसे बचा जा सकता है?
0: लू में सबसे जरूरी होता है पानी पीना, लेकिन आप जो बोतल में पानी ले जाते हैं या जो पानी पीते हैं उससे थोड़ा अलग पानी बनाइए। एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें एक चुटकी नमक डालिए और नींबू डालिए, और ऐसा ही पूरी बोतल भर पानी बनाइए और उसको अपने साथ लेकर चलिए। जब भी आपको थोड़ी सी जीभ में सूखापन लगे आप तुरंत अपनी गाड़ी रोककर या एक छाया में खड़े होकर पानी भरपेट पानी पी लीजिए। प्याज को रखने से क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि आप इस तरीके से पानी पीते रहेंगे और तेज धूप में बिना गमछा ओढ़े या हैट लगाए बाहर नहीं निकलेंगे तो बाहर वाली लू लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लू आपको लग रहा है कि आपको बहुत गर्मी हो रही है और आप कोल्ड ड्रिंक पी लिए, तो यदि कोई भी कोल्ड ड्रिंक जिसमें सोडा हो, जिसमें बबल आते हो, गैस निकलती हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो पूरे चांस हो जाते हैं कि यदि लू लगने वाली नहीं भी हो तो आपको लू लग जाएगी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में सोडा होता है और वो पानी की कमी को और बढ़ाता है। यदि आप बाहर निकलते हैं तो कोशिश करिए कि आप छाछ पीजिए या मैंने जैसे पानी बताया वैसा पानी बना के पीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जब घर में आए तो एकदम से ठंडे में मत आइए, थोड़ी देर पसीना निकलने दीजिए, उसी के बाद एसी या कूलर में आइए। जब तक पसीना ना निकल जाए, शरीर ठंडा ना हो जाए, तब तक एसी या कूलर में मत आइए, नहीं तो आपको लू लग सकती है।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने कही और हमारे युवा श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि घर में भी लू लग सकती है, तो सर घर में जो लू लग सकती है उससे किस प्रकार बचा जा सकता है?
0: घर में लू अधिक गर्मी के कारण लगती है। यदि आपका टीन का मकान है तो आजकल कुछ इंसुलेटर आते हैं जो बहुत सस्ते मिलते हैं, वो टीन के ऊपर डाल लीजिए। यदि इंसुलेटर नहीं है तो आप घास डाल लीजिए जो गाय खाती है, या फिर वो भी नहीं है तो जो सीमेंट वाली बोरी आती है उसको घर की छत पर डाल लीजिए और उसको जरूरत पर गीला करते रहिए। सीमेंट का यदि आपकी छत है तो वहां पर आप सफेद पेंट करवा लीजिए और इसी प्रकार कोई इंसुलेटर भी रखवा लीजिए। आग के पास मत बैठिए, आगे से दूर रहिए, और घर में इसी प्रकार का पानी जो मैंने बताया उसको प्यास लगने पर लगातार पीते रहिए। घर की लू भी खतरनाक होती है। आजकल की लू जो भोपाल या नागपुर जैसे इलाके में होती है उसमें वो सही की लू होती है, उसको

0: कीड़े काटने से, पिस्सू काटने से कीड़े काटने की बीमारी है, इसका टाइफस भी होने लगा है, ये भी बैतूल में बहुत कॉमन है, छुप बहुत निकलते हैं, तो इसका काटना भी बरसात के बाद बहुत कॉमन है, इसके बहुत से पेशेंट आते हैं।
1: सर, सबसे पहले तो आप हमारे युवा श्रोताओं को बताएं कि जो बरसात से बीमारियां आती हैं उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है।
0: पानी की बीमारी से बचने के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि पानी को थोड़ा सा गर्म कर ले और पी ले से बीमारी पानी वाली नहीं आएगी, पर ऐसा गलत। पानी को यदि आपको गर्म करना है तो 30 मिनट तक खौलाना पड़ेगा। 30 मिनट खौलाने के बाद ही पानी साफ हो पाएगा, इतना साफ कि बीमारी नहीं आए। दूसरा तरीका ये है कि आप पानी बोरिंग का पिए और बोरिंग के आसपास साफ सफाई रखें। होता ये है कि गर्मी में हम लोग खेत में जाके टट्टी कर लेते हैं, जैसे बरसात आती है वहाँ पे पानी भर जाता है और वही पानी हम अपने हाथ से पी लेते हैं और सोचते हैं कि बढ़िया पानी है, वो टट्टी पानी में मिल जाती है और आपको उल्टी दस्त की बीमारी पैदा करती है। इसके अलावा पानी साफ रखने का तरीका ये भी है कि आप बाजार में क्लोरीन की गोली या सरकारी अस्पताल में क्लोरीन की गोली और क्लोरीन का लिक्विड मिलता है, वो रात में एक मटके में एक क्लोरीन की गोली डाल दे और सुबह वही साफ मटके का पानी पिए। मटके और गुंड का साफ होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा सफाई रखना है तो आप ये एहतियात के साथ में तांबे का गुण ले और उसमें तुलसी की पत्ती और मुंगना की पत्ती, दोनों पत्ती साफ करके रात भर रखे रहे और सुबह उसका पानी पिए, ये भी बहुत अच्छे तरीके से पानी को साफ करने के उपाय है।
1: सर, आपने बहुत ही अच्छे उपाय हमारे युवा श्रोताओं को बताए। सर, हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि बरसात में अधिकतम बीमारियां मच्छरों से होती हैं, जिसे आपने अभी कहा था, तो इससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं?
0: मच्छरों से बचना तो बड़ा मुश्किल है। घर में जाली लगवाया मच्छरों की, डेंगू का मच्छर होता है, दिन में काटता है, बड़ा सा मच्छर होता है, बाहर निकलने पर काटता है। पत्ती और पानी जमा ना होने दे जी। पानी जमा होने वाले मच्छर से फैल्सिपेरम भी होता है और कई बार डेंगू भी होता है। दूसरी बात ये करे कि शाम के समय धुआं करे और रात के समय मच्छरदानी लगाए। इसके बिना आपका इन चीजों से बचना बड़ा मुश्किल है।
1: डॉक्टर, जैसे कि आपने अभी हमें बताया था कि नई बरसात सांप और बिच्छू भी लेकर आती है, तो इससे कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, ये आप हमारे युवा श्रोताओं को बताइए।
0: बिच्छू अधिकतर मिट्टी के अंदर और गोबर की खाद में पाए जाते हैं। कभी भी गोबर की खाद या मिट्टी को हाथ से न खोदे, हमेशा कुछ पहन ले या टॉर्च का इस्तेमाल करें या दिन के उजाले में। यदि आपको बिच्छू ने काट लिया है तो आप लाल दवा कुएं में डालने वाली जो आती है उसकी थोड़ी सी टिक्के रख ले बिच्छू काटे की जगह पर और एक नींबू निचोड़ ले शुरुआती बिच्छू काटे में, इससे तुरंत आराम हो जाता है। अब बची सांप की बात, तो अधिकतर सांप ईंट वाली जगह पर या चूहे वाली जगह पर रहते हैं, तो अपने आसपास ईंट लकड़ी कंडे का जमावड़ा ना होने दे, रात में नीचे ना सोए, हमेशा खटिया का इस्तेमाल करे, बाहर निकले तो हमेशा टॉर्च का इस्तेमाल करे और जोर से पैर खटाते हुए या लकड़ी खटखटाते हुए जाए, जिससे कि यदि कोई सांप हो तो वो दूर हट जाए। आजू बाजू पर ध्यान दे, कोबरा आपको यदि है आजू बाजू तो वो सीधा आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो पहले फुसकारेगा, तो फुसकार पे ध्यान दे और तुरंत फुसकार आए तो पीछे हट जाए। करेत नाम का सांप हमेशा घास के रंग का होता है और खेतों में मेड़ों पर पाया जाता है और ये कोबरा जैसा नहीं होता, ये चुपचाप अटैक करता है, तो हमेशा घास पाल पर ध्यान दे और इस प्रकार के सांप के लिए टॉर्च का इस्तेमाल जरूर। यदि आपको सांप ने काटा है तो आप बिल्कुल भी झाड़ फूक पर ना ध्यान दें, झाड़ फूक आप बाद में कराते रहे, तुरंत अस्पताल जाए। अस्पताल जाने से दवाई लगने के बाद में 100 में से 99 यदि समय पे दवाई लगती है, 100 में से 99 सांप और बिच्छू के पेशेंट को कुछ नहीं होता, वो बच जाते हैं, वो नहीं मरते।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे युवा श्रोताओं को प्रदान करी। डॉक्टर साहब, आपने गर्मी से बचाव और स्वस्थ रहने के संबंध में बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे युवा श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से

0: आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के समापन से पहले मैं आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपको कौन सा गीत या किस प्रकार के गीत सुनना सबसे अधिक पसंद है?
1: बताओ, गर्मी धीरे धीरे जा रही है, बरसात आ रही है, अब क्यों ना हम लोग बरसात का स्वागत करें। परदेशी फिल्म का एक गाना है, रिमझिम बरसे पानी आज मोरे अंगना, मीना कपूर ने गाया है और बहुत सुंदर गाना है। वो आप सुने, मैं भी सुनता हूँ। आपको धन्यवाद।
0: चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आपको सुनवाते हैं डॉक्टर साहब के पसंद का ये गीत। जाते जाते मुझे फिर दीजिए अनुमति। धन्यवाद।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम बढ़ते हैं लोक रंग की ओर। दोस्तों, लोक रंग में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की आदिवासी कला और हस्तशिल्प के बारे में। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है और यही राज्य अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, लोक कला और परंपराओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ गोंड, भील, कोरकू जैसी अनेक जनजातियां निवास करती है, जिनकी कला और जीवन शैली प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की आदिवासी कला सिर्फ चित्रकला नहीं, बल्कि यह जीवन और प्रकृति की कहानी है। गोंड चित्रकला में पेड़, पशु पक्षी और प्राकृतिक

प्राकृतिक दृश्य इतने सुंदर रूप से दिखाए जाते हैं कि जीवन प्रतीत होते हैं। हर चित्र का एक कहानी होती है। फिल भील चित्रकला भी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोक कला है, जिसमें छोटे छोटे बिंदुओं और रंगों से बड़े दृश्य बनाए जाते हैं। ये कला लोक जीवन, परंपराओं और त्योहारों को दर्शाती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का हस्तशिल्प भी बहुत समृद्ध है। यहाँ बांस, लकड़ी और मिट्टी से सुंदर वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे टोकरियां, सजावटी सामान और पारंपरिक उपयोग की चीजें। ये हस्तशिल्प ना उपयोगी होते हैं, बल्कि कलाकारों की मेहनत और संस्कृति की पहचान भी होते हैं। आज के समय में इन कलाओं को नई पहचान मिल रही है, लेकिन अभी भी इन कलाकारों को सही बाजार और उचित मूल्य की आवश्यकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कला को और संस्कृति को बढ़ावा दें और स्थानीय कलाकारों का सम्मान करें, क्योंकि ये सिर्फ कला नहीं, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है। तो दोस्तों, लोक रंग में तो इतना ही, लेकिन अब वक्त है कल के कार्यक्रमों के बारे में जानने का। दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में कल सबसे पहले आज की बात का विषय है यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहे। इसके बाद अवसर प्रतियोगी परीक्षाओं में बात होगी छात्रवृत्ति, नए कोर्सेज और रोजगार की। स्तंभ में सेहत मंत्र में गर्मी में डिहाइड्रेशन से कैसे बचे विषय पर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ ही जानेंगे अगले दिन होने वाले कार्यक्रमों के बारे में, साथ ही सुनेंगे प्यारे प्यारे गीत। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं। आकाशवाणी का व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7141234722। तो श्रोताओ, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त राजनंदिनी को इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए जानते हैं आज और कल की सभाओं के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोधुली। फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे 6:30 पर। 6:50 पर समय होगा सबरस कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार होंगे 7:10 से। ग्राम सभा कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 7:20 पर। इसमें आज की बात का विषय है बाल श्रम विरोधी दिवस। आपके संदेश, आपके गीत, इस कार्यक्रम का वक्त होगा रात्रि 8:00 से। 8:30 पर होगा कार्यक्रम साज और आवाज। समाचार संध्या सुनेंगे 8:45 से और रात्रि 9 से 10 बजे तक होंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी मुंबई से। आपके मीत ये गीत, इस कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 10 बजे से और 10:25 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास 1 और 1:11। आकाशवाणी दिल्ली से

प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम हिंदी में समाचारों का समय होगा रात्रि 11 बजे से और 11:05 से आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये थे आज की सभा के शीर्ष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

कल की सभा में भक्तिधारा कार्यक्रम से शुरुआत होगी। 6:05 से 6:30 पर होगा कार्यक्रम चिंतन। रामचरितमानस गान सुनेंगे 6:35 से 6:45 पर होगा कार्यक्रम लोक रंजनी। हिंदी में समाचार 7 से होंगे और 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार। यादों के झरोखे से इस कार्यक्रम का समय होगा 7:20 से। सुबह सवेरे कार्यक्रम का समय होगा 7:50 से और 8 से होंगे समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का समय है 8:15 और 8:30 से सुनेंगे कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे सुबह 9 से रात्रि 10 तक। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का समय होगा सुबह 10 से 10:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। महिला जगत कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 10:30 से। इसमें आज की बात का विषय है रक्तदान, जागरूकता, स्वास्थ्य एवं सामाजिक समावेशन। प्रादेशिक समाचार दोपहर 2:10 से सुन सकेंगे और हिंदी में समाचारों का समय होगा 2:15 पर। 5:30 से होगा कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज की बात का विषय होगा यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। लोक संगीत कार्यक्रम का समय होगा 6:05 से 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबरस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 6:50 से। प्रादेशिक समाचार सुनेंगे 7:10 से। 7:20 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज की बात का विषय है ग्रामीण हस्तशिल्प गांव के लोगों को रोजगार दिलाता है। बातें नहीं गीत नहीं, इस कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8 से 8:30 पर होगा कार्यक्रम युगल गीत। समाचार संध्या 8:45 से होगी। ये थे आज और कल की सभा के कुछ कार्यक्रमों के रूपरेखा। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 6:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। आज कार्यक्रम में आवाज है लता जी की।

लता मंगेशकर के गाए भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो की आवाज के साथ। फिल्म का नाम अग्नि साक्षी, बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म चलते चलते बोल जावेद अख्तर के, संगीत आदेश श्रीवास्तव का, आवाज अभिजीत की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

Sabras. आज कार्यक्रम में कलाकार हैं चंदन दास।

चंदन दास के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम में आकाशवाणी की बैतूल केंद्र से।

عنایت سے. आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चंदन दास के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत. कार्यक्रम है सबरस.

चंदन दास के गाए इस गीत के साथ ही सब रस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज। और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में खेती में महिलाओं, खासकर माताओं और बहनों की भूमिका पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: महिलाओं की भागीदारी और कैसी बढ़े।

0: तरफ आकर्षित हो और नई तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन कैसे बढ़ाएं और किसानों की आजीविका कैसे सुनिश्चित करें, आय और बढ़े। ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मतलब भरपूर अन्न लोगों को भोजन के लिए प्राप्त हो और अन्न भी ऐसा हो पौष्टिक आहार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत के कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है। उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक स्टार्टअप्स में से 13 क्षेत्रों में 120 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ और खंडवा जिले में भी सभी विकासखंड नगरीय निकाय मुख्यालयों पर आज से जन कल्याण शिविर शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानून में प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 17 से 18 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज एक बैठक में MSME उद्योगों के संवर्धन, जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयां और उनके निराकरण आदि पर चर्चा की। राजगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। शहडोल जिले में 14 जून को ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर छतरपुर जिले में लोक गायन, लोकनाट्य और संगीत पर केंद्रित विरासत महोत्सव का आयोजन 17 और 18 जून को किया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने आकाशवाणी के भ्रमण के दौरान कहा कि आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, सटीकता और जन सरोकारों से जुड़े प्रसारणों के कारण लोगों के बीच विशेष स्थान बनाए हुए है। शहडोल संभागायुक्त ने वीरपुर से शिवपुर तक रेलवे लाइन का कार्य शीघ्रता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित निकासी मार्ग और लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम में नगर

निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैतूल वृत्त कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उज्जैन संभागायुक्त आशय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर जिले में मॉनसून और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। श्री राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजों में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षण परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

राम राम किसान भाइयों, आज की ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। लीजिए, प्रस्तुत है आज की ग्राम सभा। किसान भाइयों, जैसा कि हम हर दिन की तरह आज भी हम यह कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं और खेती किसानी से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको पहुंचा रहे हैं, सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको ये नई जानकारी हम बता सकें और आप इन नई जानकारियों के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, आज बाल श्रम दिवस है, इस विषय पर भी हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे सोयाबीन को रेज बेड पद्धति से हम कैसे बुआई करें और इससे कैसे अधिक उत्पादन लें। साथ ही भेंटवार्ता होगी। भेंटवार्ता में आज हम बात करेंगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अरविंद झारखंडे जी, जो आमला में पदस्थ है। ये हमें खाद उर्वरक प्रबंध और जो बीज उपचार है, बीज उपचार किस प्रकार से, उन किन विधियों से करें, इस विषय पर ये हमें बताएंगे। और साथ ही श्रृंखला खेती किसानी की, इस पर बात करेंगे। मंडी भाव होंगे, मौसम की जानकारी होगी। तो आज हम बात करते हैं कि आज 12 जून है, बाल श्रम निषेध दिवस है, और इस दिवस की शुरुआत 2002 से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया गया और इसका मेन उद्देश्य था कि बाल श्रम जो होता है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे होते हैं, उनको कारखानों में, खदानों में और अन्य जगह पर काम पे लगाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। तो शोषण के विरुद्ध उनके ऊपर कार्रवाई के लिए और उन बच्चों को अपने बचपन, शिक्षा और बुनियादी अधिकारियों को लेकर यह बाल श्रम दिवस मनाया गया और उसके लिए कानून बनाए गए। और इस कानून के माध्यम से इन बच्चों के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश में बाल श्रम के कानूनी प्रावधान हैं और कुछ संवैधानिक अधिकार भी इन्हें दिए गए हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या खतरनाक कारखानों में काम कराना कानूनी अपराध है। इस दिवस का उद्देश्य बालकों को अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसर प्रदान कराना है। राइट टू एजुकेशन, इस प्रावधान के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है। यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना पुनर्वास और शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों का संचालन अभी किया जा रहा है। तो ये प्रयास बाल श्रम के ऊपर किए जा रहे हैं और हमारे भारत देश में भी इसका पालन हो रहा है। और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कानून के तहत आप लोग भी किसी भी जो बच्चे हैं 14 वर्ष से कम, इन बच्चों को काम पे ना लगाएं, क्योंकि इस काम पे लगाने से इस पर कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। इसमें जेल जाने का भी प्रावधान है। इसलिए बच्चों को काम पे ना लगाएं, इन्हें शिक्षा से जोड़े। जो बच्चे निर्धन हैं, उनके लिए शासन द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। पुनर्वास स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए और इनको कुछ आर्थिक सहायता भी इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। तो ये थी बाल श्रम विषय के ऊपर जानकारी। अब आज की हम बात करते हैं सोयाबीन के ऊपर। आने वाला समय हमारा बोनी का है। सभी किसान भाई आज बाजार में आ रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं और आने वाले सीजन की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे जिले में सोयाबीन का एक अच्छा रकबा है। तो सोयाबीन को हम देखते हैं कि ज़्यादातर किसान भाई सीधे खेतों में बोते हैं और इससे बोने से क्या होता है कि कम बारिश होती है तो सोयाबीन मर जाती है, और अगर अधिक बारिश हुई
तो भी सोयाबीन को नुकसान पहुंचता है। तो वैज्ञानिकों द्वारा यह सर्च किया गया कि ऐसी कोई नई पद्धति लाएं जिससे कि किसान भाइयों को नुकसान कम हो और फायदा अधिक हो। इस विषय पर हमारे वैज्ञानिकों ने रेज बेड पद्धति, जिसको हम अगर हम हमारी भाषा में बोले या गांव की भाषा में बोले तो जो हम क्यारियां बनाते हैं, इन क्यारियों के ऊपर जो लगभग खेत से 1 फीट ऊंची क्यारियां हमें बनाना है और इन क्यारियों में हमें सोयाबीन की बुआई करना है। इसमें जब हम बुआई करते हैं तो बीज से बीज कम से कम 3 से 5 इंच की दूरी पे बीज गिरना चाहिए और एक कतार में हम बुआई करते हैं और कतार से कतार की दूरी 1 फीट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम बेड के माध्यम से बुआई करते हैं तो हमें सबसे पहले तो बीज की मात्रा कम लगती है, और बीज की जब मात्रा हमें कम लगती है और पौधों की संख्या अच्छी आती है, साथ ही साथ इसमें जब कभी अधिक बारिश हो जाती है तो जो हमारी दो बेड के बीच में जो नाली होती है, इन नालियों के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। और अगर बारिश कभी रुक गई या एक लंबे टाइम तक बारिश नहीं आई तो भी इसमें नमी पर्याप्त मात्रा में होती है, जिससे पौधों की जड़ों को नमी मिलते रहती है और पौधा अपनी गति या बढ़ावार करते रहता है। साथ ही साथ दोनों के बीच में गैप होने के कारण पौधों को हवा और धूप अच्छी मिलती है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं अच्छी होती है और पौधों की बढ़ावार आती है और पौधा अच्छा बनता है, कीट बीमारी कम लगते हैं। जब ये सब चीज़ें अच्छी होती है और कीट बीमारियों का प्रकोप कम होता है तो हमें अपेक्षाकृत हम जो सीधी बुआई करते हैं इससे इसमें उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले सीजन में

जब भी हम सोयाबीन बोने का प्लान कर रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप लोग इस बार रेज बेड पद्धति या जो कुंड में बुआई हम बोलते हैं, क्यारी के ऊपर बुआई बोलते हैं, इसकी बुआई करें। इसका एक और अच्छा फायदा है कि अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो हमें लगभग 40 से 45 किलो बीज की मात्रा लगती है, और हम रेज बेड पद्धति से बुआई करेंगे तो हमें 15 से 18 किलो ही बीज लगता है। तो इसमें बीज भी कम लगता है, कीट बीमारी भी कम आते हैं, अधिक पानी या नमी की मात्रा कम होने पर भी यहाँ पर हमारी फसल अच्छी प्रकार से बढ़ती है और अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन आता है। तो ये हमारी आज की जो बात थी सोयाबीन की रेज पद्धति विधि, ये हमने बताया। आशा करते हैं कि आप लोग भी इस पद्धति को अपनाएंगे और आने वाले समय में रेज बेड पद्धति के माध्यम से सोयाबीन की बुआई करेंगे। अब वक्त है एक विराम का, फिर हम मिलते हैं।

0: इस प्यारे से लोकगीत के बाद आइए सुनते आज की भेंट वार्ता।
1: राम राम किसान भाइयों, आज की भेंट वार्ता में हम बात करेंगे हमारे जिले के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अरविंद झारखंडे जी से। अरविंद झारखंडे जी नमस्कार।
2: नमस्कार, मेरा नाम अरविंद झारखंड है, मैं कृषि विस्तार अधिकारी आमला हूँ और आज इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार, हम सभी किसान भाइयों की ओर से अरविंद जी आपको। अरविंद जी, आज की भेंटवार्ता में जो वर्तमान अभी हमारे जिले में बोनी का सीजन आने वाला है और हम देख रहे हैं कि किसानों को बड़ी खाद अपनी मर्जी से अभी तक मिलता था और आज के टाइम में आपके विभाग द्वारा इनको टोकन प्रणाली से

0: खाद दिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं किसान हमारे नाराज है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसानों को ये पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है तो वो किस प्रकार अपने अन्य फसलों जो जो फसल बोने वाले हैं उनमें किस प्रकार से ये खाद का या फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करेंगे।
1: नमस्कार, मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि शासन की गाइडलाइन है कि सोयाबीन के लिए तो आपको यूरिया की मात्रा नहीं मिल रही, मगर डीएपी और एनपीके की मात्रा मिल रही है, या आपको पोटाश की मात्रा मिल रही है, एमओपी की मात्रा मिल रही है। उसी कंडीशन में आपको मक्का के लिए 2 बोरी यूरिया मिल रहा है, उसी प्रकार आपको एक बोरी डीएपी मिल रही है प्रति एकड़ के हिसाब से, जो खेती के लिए बिल्कुल पर्याप्त मात्रा होती है। इसका बस अपने को एक मैनेजमेंट का जो तरीका है वो अपने को बदलना पड़ेगा। मैंने देखा ये है कि हम किसान क्या करते हैं कि जैसे ही अपने यूरिया की मात्रा जैसे 2 बोरी देना अपने को, हम क्या करते हैं कि इकट्ठे दे देते हैं कई बार बोने के समय, हमें वो ना करके अब हमें कुछ नए विकल्प की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें जब भी हम बीज लाए पहले उसकी गुणवत्ता जांच कर ले कि वो बीज हमारा बोने के लायक है नहीं है, उसकी गुणवत्ता उसका जनरेशन परसेंटेज देख ले, अगर बीज टूटा फूटा है तो उस बीज को बिल्कुल उपयोग ना करें। और एक तरीका ये है कि जब भी हम बीज बोए उसके लिए 1 किलो बीज में 2 से 3 ग्राम डीएपी की मात्रा, जो लिक्विड डीएपी आता है अपना नैनो डीएपी, उसका उपयोग करें। उसका उपयोग करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो आप जो डीएपी की मात्रा देने वाले हो बीज बोते टाइम, वो आपको एक बोरी अगर आप एक बॉटल आप लेते हो नैनो डीएपी की, तो आपकी एक बोरी का वो कवरेज करता है, क्योंकि डीएपी की जो जो लिक्विड मात्रा होती है वो किसानों की फसल में 80% तक एरिया कवर करती है। वही अपन अपन सॉलिड डीएपी की बात करते हैं तो वो लगभग आपका 40-50% तक कवर करता है। और उसकी कंडीशन ये रहती है कि अगर उसमें आप कल्चर का उपयोग नहीं करते हो तो वो उसकी घुलनशीलता बहुत धीरे धीरे होती है। इसी कंडीशन में हम बताएंगे कि कुछ कल्चर आते हैं आपके, पीएचडी कल्चर आते हैं, एजोटोबैक्टर आते हैं, माइकोराइजा कल्चर आते हैं, इनका उपयोग करोगे तो आपकी खाद की जो घुलनशीलता बढ़ती है उसका आपको फसल का जो रिजल्ट है 1 दिन बाद जो दिखना है वो रिजल्ट आपको 10 दिन 15 दिन दिखने जाता है। इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो मात्रा दी जा रही है उसको संतुलित उपयोग करें, और जहां तक हो सके यूरिया की मात्रा को किसान भाई उसको 2 या 3 भाग में दे। जैसे अपने को 1 बोरी यूरिया देना है तो उसको 2 भाग या 3 भाग में, या तो आधे भाग अपन बोनी समय दे दें, और जो बची अपनी आधी मात्रा है उसको हम जैसे ही अपनी फसल 1 महीने की होती है हम जैसे निराई गुड़ाई करते हैं उसके बाद दें, और अगली मात्रा जैसे हमको लगता है कि अब इसमें मंजरी आने वाले हैं मक्का वगैरह में उस समय उपयोग करें। तो इसका जो रिजल्ट है वो किसान भाई के लिए बहुत सार्थक होता है, और शासन की मंशा यही है कि किसान कम मात्रा में उपयोग करे फर्टिलाइजर का, और जहां तक हो सके अपने जैविक कल्चर जैविक खेती की बात जो होती है उसमें जैविक जितने उत्पाद आते हैं उनको उपयोग करें, जिससे आपका फसल उत्पादन बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज ये मेन हमारा कहना है कि किसान एक फसल में निर्भर ना रहे, मक्का के साथ में इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप अरहर का उपयोग करें, मूंग का उपयोग करें, उड़द का उपयोग करें, और जहां आप सोयाबीन का उपयोग सोयाबीन ले रहे हो तो वहां पे भी आप कुछ अन्य विकल्प ढूंढें कि सोयाबीन की फसल का जिस प्रकार से देख रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों में कि उत्पादन बराबर हो नहीं पा रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ किसान जो है सोयाबीन की जो बीज मात्रा है वो बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। अधिक मात्रा उपयोग करने से ये होता है कि सोयाबीन के पौधे घने हो जाते हैं तो वहाँ पे बराबर मात्रा में एरेशन नहीं हो पाता है। एरेशन जो पानी करना होता है कि पौधा बराबर फैलता नहीं है, जब पौधा फैलेगा नहीं तो उसकी ब्रांच नहीं बनेगी, ब्रांच नहीं बनती है तो उसके कारण उसकी जो फलियाँ हैं अपना सही आकार नहीं ले पाती है, आकार नहीं लेने के कारण बीज आपका छोटा हो जाता है, और जिसके कारण किसान भाई अभी सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से कि सोयाबीन बदल के हम मक्का लगाए तो मक्का अगर चाहते हैं किसान तो उसमें इंटरक्रॉपिंग करें। और एक मेन हमारा मकसद है कि किसान भाई अब नवाचार का समय आ चुका है, अब सोयाबीन मक्का के साथ में और भी फसलें जैसे रामतिल वगैरह है इनका उपयोग करें। और एक एक चीज और है कि किसान भाई ऐसा फसल चक्र अपनाए कि जिसमें कि दलहन फसल और सीजन फसल दोनों साथ में रहे ताकि किसान का जोखिम भी कम हो जाए और खेत की जो उत्पादन क्षमता है वो बनी रहे। और
0: अरविंद जी, मैं आपको यहाँ पर एक आपने बहुत अच्छी बात बताई फसल चक्र को लेकर, फसल विविधीकरण को लेकर और संतुलित खाद की मात्रा। आपने जो खाद टोकन प्रणाली से एक संतुलित मात्रा में बोरियों के माध्यम से दिए, अगर हमारे किसान भाई नैनो यूरिया या नैनो डीएपी लेना चाहते हैं तो ये पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, इसमें भी कोई टोकन वाली प्रणाली है?
1: जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि नैनो फर्टिलाइजर शासन के द्वारा आज तक के ऐसा कोई पोर्टल पे वो नहीं किया गया है, किसान अपनी आवश्यकता अनुसार नैनो फर्टिलाइजर ले सकता है। और एक चीज बताना चाहूंगा, नैनो फर्टिलाइजर सबसे अच्छा जो रिजल्ट है, क्या होता है कि नैनो फर्टिलाइजर जब आप डालते हो खेत में उसका जो कवरेज आता है वो लगभग आपका 70 से 80% आता है, बाकी अपन जो सॉलिड फर्टिलाइजर डालते हैं उसका कवरेज बड़ी मुश्किल से 30 से 35% तक ही आ पाता है।
0: अरविंद जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि लिक्विड का हम ज्यादा से

0: ज्यादा लाभ ले सकते हैं। लेकिन दानेदार में ये भी सुनने में आता है कि कई बार कई कंपनियों का खाद सैंपल में हमने पाया गया है कि जो कंट्री जैसे भाई अपन यूरिया में 46% नाइट्रोजन की बात करते हैं, पर कई कंपनियों में पाया गया, जैसे आपने यही बताया कि 40% तक ही हम ग्रेन्युअल का उपयोग कर पाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अरविंद जी जैसा बोल रहे कि 80% तक, तो इस हिसाब से अरविंद जी हमारे किसानों को तो नैनो या तरल खाद ज्यादा उपयोग करना चाहिए, तो उनका खर्चा भी बचेगा और उनको लाभ भी ज्यादा होगा, ऐसा मेरा मानना है।
1: किसान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों का समय ये आ चुका है कि आज जिस प्रकार से अपनी निर्भरता बढ़ गई है रासायनिक फर्टिलाइजर पे, और शासन की मंशा हो गई है कि अब किसानों को रासायनिक फर्टिलाइजर को कम करना है। इसी कार्यक्रम में आजकल देख रहे होंगे आप लोग भी कि प्रकृति खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जितने जो अपने कल्चर उत्पाद है, या पीएचडी कल्चर, वैम कल्चर, माइक्रोराइजर कल्चर, या एजेंट वेक्टर, या जिस प्रकार शासन बोलता है कि जिसे आपकी नरवाई जब खेत में हो जाती है उसके लिए करते वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें, तो शासन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो आप खाद डालते हो, क्या होता है जैसे अपन कोई भी खाद डाल रहे हैं सॉलिड वाला, उसमें जैसे यूरिया 100 किलो तो अपन 40% नाइट्रोजन होता है, बाकी 58% जो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फिलर मटेरियल होता है, वो कहीं ना कहीं आपके खेत में जमा होता है और आपके खेत की मिट्टी को खराब करता है। आज जो उत्पादन गिर रहा है उसका सबसे मुख्य कारण यही होता है कि किसान एक की जगह दो गुना उपयोग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फसल को तो जो लाभ मिलना चाहिए उसके उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि आज 40 गज के ट्रैक्टर भी खेत में काम करने में बहुत दिक्कत है।
0: आप देखते हैं कि अगर हम आज से 90 के दशक में जाएं अरविंद जी, तो 2 बैल और लकड़ी के उपकरण से खेती हो जाती थी। उसका मेन कारण था कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे रासायनिक खादों पर कम निर्भर थे और जानवर पालते थे, कंपोस्ट बनाते थे, उनके पास गोबर की खाद होती थी। उस टाइम मिट्टी में जो मुलायमपन था और कम पानी में भी हमारी फसलें पका करती थी। आज आपने जो बताया कि लगातार रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करने से 40 का ट्रैक्टर नहीं, अरविंद जी मैं तो ये बोलूंगा कि आज 60 HP का ट्रैक्टर भी काम नहीं कर रहा है। इसका मेन कारण ये है कि जो हम फर्टिलाइजरों का अनाधुन प्रयोग कर रहे हैं उसकी पूरी मात्रा ना फसल ले पा रही है ना मिट्टी में वो घुल पा रहा है। इसके लिए जो आपने बताया कि PSB कल्चर, राइजोबियम कल्चर, पॉम कल्चर, वॉम और अपना माइकोराइजा, तो आप जब तक रासायनिक और जैविक का संतुलन बना के खेती नहीं करोगे तो आपकी मिट्टी की दशा आने वाले दिनों में लगातार खराब होने की संभावनाएं बनी हुई है। अब एक क्वेश्चन मैं और अरविंद जी आपसे पूछना चाहूंगा कि खरीफ का मौसम है, जब भी आज हमारे सभी किसान भाई बाजारों में आ रहे हैं तो जो भी उनको कल्चर लेना है या जो भी बीज लेना है, तो उसको खरीदने से पहले उन क्या क्या सावधानियां उनको वहां बरतनी चाहिए ताकि उनको अच्छी क्वालिटी के की दवाइयां मिल जाए, अच्छी क्वालिटी के कल्चर मिल जाए और अच्छी क्वालिटी के बीज मिल जाए।
1: किसान भाई को ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी कल्चर का मार्केट लेने जाते हैं तो पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट देखें, किस कंपनी का है, और प्रोडक्ट में जो कंटेंट लिखे हुए हैं उसको ध्यान से पढ़ें। और जब भी आप कोई कल्चर बनाते हो उसके पहले सावधानी ये रखें कि जहां भी आप कल्चर बनाना चाहते हो अपने खेत में, घर में, तो पहले आपको ड्रम की व्यवस्था करना है। और कल्चर बनाने के लिए एक सबसे बड़ा जो वो है कि आपको कल्चर के लिए पहले आपको बेसन और गुड़ का उपयोग करना है। और किसी भी कल्चर आप बनाते हो तो ये मत सोचिए कि आपने बार कल्चर बना ली तो आपके लिए वो 2 महीने 3 महीने चलेगा। कल्चर क्या होता है, एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, जीवाणु को आपको कुछ ना कुछ खाने को देना पड़ेगा। अगर आप कल्चर का उपयोग 15 दिन नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो आपको फिर उसमें गलती गुड़ और बेसन की मात्रा डालना पड़ेगा। और उसके लिए एक निर्धारित थंब रूल ये है कि आप 100 किलो अगर पानी, 100 लीटर अगर पानी ले रहे हो आप कल्चर बनाने के लिए, तो उसमें आपको 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन का उपयोग करना पड़ेगा। और उसका एक तरीका होता है कि आपको हर 2 से 3 दिन में या तो क्लॉक वाइज या सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से एक बार डंडा घुमाना है। ऐसा नहीं कि आप उसको पूरी तरीके से खंगाल रहे हो, सिर्फ एक बार डंडा घुमाना, उससे यह होता है कि आपका जो कल्चर है वो पूरी तरह से मिल जाए। और आपको हर 15 दिन उसका उपयोग करना है, अगर नहीं कर पाते तो आपको फिर से उसमें गोबर मतलब अपना अपना चने का आटा या जो भी आपका बेसन है या आपको गुड़ उसका उपयोग करते रहना है। इससे आपका जो कल्चर है उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी और आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कल्चर उपयोग करने के सबसे जरूरी चीज़ है कि किसान भाई कल्चर उपयोग करने में इतने थोड़ा सोचते हैं कि हम कल्चर के लिए उपयोग करेंगे तो हमें हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उसके लिए बताया जाएगा कि जहाँ पे अगर किसान भाई अपने सीधी सिंचाई कर रहे हैं या फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मटके में भर के या कुछ ऐसा साधन करके कि ताकि जो कल्चर का है वो सीधे वहीं पानी में गिरे और वो पानी सीधे सीधे अपने पूरे खेत में फैल जाए, एक तरीका तो ये होता है। और या तो फिर अपने पंप में भर के उसका सीधा सीधा स्प्रे कर दें। इस प्रकार से उपयोग करने से किसान भाइयों की चलते एक तो खाद की लागत भी कम होगी, एक तो मिट्टी गुणवत्ता बनी रहेगी, साथ ही साथ जो अन्य जो प्रतिकरण प्रभाव पड़ते हैं मिट्टी पे उसका बहुत समय तक के किसान अपनी मिट्टी को बचा सकता है और अपने खेती को बढ़ावा दे सकता है।
0: एक क्वेश्चन और अरविंद जी आपसे पूछना चाह रहा था कि किसानों को थोड़ा सा बीज अंकुरण प्रतिशत कैसे जाने और बीज उपचार की कुछ विधियां हो आपके आपके हिसाब से, तो वो हमारे किसान भाइयों को बताएं क्योंकि ये दो जरूरी है किसान भाइयों को अभी आने वाले बोने के लिए।
1: जैसा किसान भाई को कहना चाहता हूँ कि जो किसान भाई अपने घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो उनके लिए सलाह रहती है कि आप अपने जो भी बीज बोना चाह रहे हैं, अगर आपके 4 बोरे बीज रखा हुआ है तो उसमें से हर वो 4 बोरे में से 25-25 बीज के दाने निकाल लें रैंडमली। उनको निकाल के आप गीले कपड़े पे उनको रख के उनपे थोड़ा पानी डाल के उनका अंकुरण प्रतिशत चेक कर ले। अगर आपके अंकुरण प्रतिशत अगर 70% से कम आता है तो आप उस बीज का उपयोग बिल्कुल ना करें। हम इसलिए कहते हैं कि अगर आप 70% से कम वाला बीज अगर उपयोग कर रहे हैं तो आपने 100 किलो बीज बोया है तो आपका 65 किलो बीज उगना है और आपका 30 से 35 किलो बीज जो आपका खराब होगा, अगर आप मार्केट में उसी बीज की अगर कीमत निकालते हैं तो किसान को वो बीज बहुत महंगा पड़ता है। और एक तरीका जैसा सर ने जैसा ही बात चल रही है कि बीज उपचार के लिए, तो जब भी आप बीज लाए तो उसका सबसे पहले उसका फंजीसाइड से उपयोग करें। पहले से उपयोग करने से थोड़ा ये होता है कि जो भी सीड बॉर्न डिसीज जो शुरू में लगती है फसलों को उससे बहुत बचाव होता है। और एक दूसरी हम सलाह देना चाहेंगे कि क्या बरसात का सीजन है, बरसात की फसलों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है जल भराव की। क्या होता है कि जैसे किसान बोनी करता है कई बार तेज वर्षा हो जाती है तो पानी किस खेत में भर जाता है, जब वो पानी भरता है तो वो क्या होता है बीज को खराब करता है और वहीं से आपके बीज में जो भी फंगल डिसीज है वो लगती है। तो किसानों को सबसे सलाह दी जाती है कि आप रेजमेड पद्धति का उपयोग करें या खेत में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करें ताकि खेत का जो पानी है वो आराम से खेत के बाहर निकल सके और अपनी जो फसल है उसको सुरक्षा प्रदान हो सके।
0: ये बीज उपचार के लिए कोई उपकरण की आवश्यकता होती है या कोई साधारण फट्टे वट्टे पे भी कर सकते हैं?
1: बीज उपचार के लिए एक तो किसान साधारण फट्टे पे कर सकता है या अपने मटके पर जो भी बरसात में अपन जो गर्मी पानी पी रहे थे मटके
0: जी
1: उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। आपको बीज को डाल के उसमें दवाई की मात्रा डाल के अच्छे से हिलाओगे मटके में तो वो आपका बीज में बराबर मिल जाता है। एक तरीका ये होता है कि फट्टे पे डाल के उसको मिला सकते हैं क्योंकि अपने किसान भाई छोटे किसान भाई है,
0: जी
1: अगर
0: जी
1: मशीन के चक्कर जाएंगे तो उनको वैसे ही खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमारी सलाह ये है कि जो मटके अभी अपने अगर हम गर्मी में पानी पिया है मटके अभी खाली हो चुके हैं
0: जी
1: उसी मटके का उपयोग अपन बीज उपचार कर ले। उसी मटके में अपन करते जो किसानों की बहुत अच्छी मांग रहती है कि हमको टॉनिक डालना पड़ता है तो किसान भाई को बताएंगे।

0: जमींदार को उसको मिला सकते हैं, क्योंकि अपने किसान भाई छोटे किसान भाई है,
1: जी
0: अगर
1: जी
0: मशीन के चक्कर जाएंगे तो उनको वैसे ही खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमारी सलाह ये है कि जो मटके अभी अपने गर्मी में पानी पिया है, मटके अभी खाली हो चुके हैं,
1: जी
0: उसी मटके का उपयोग अपन बिजली चार्ज करें, उसी मटके में अपन करते, जो किसानों की बहुत अच्छी मांग रहती है कि हमको टॉनिक डालना पड़ता है, तो किसान भाई को बताया जाएंगे टॉनिक का एक विकल्प अपने पास में है मटके का, कि अपन उसमें अगर अपना 20 लीटर का मटका है, 20 किलो मटका है, मतलब 20 के पानी के मटका है, तो उसमें अपन 5 किलो करते गोबर डालें, उसमें 5 लीटर गोमूत्र डालें, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 1 किलो अपन करते नीम बरगद या जो भी अपने छायादार वृक्ष हैं उसके नीचे की मिट्टी डाल के उस मटके को पूरा भर के उसको अच्छे से ढाक दें, और उसको दिन में एक बार को पूरा मटके को हिला के उस मटके को अपन 15 दिन तक सड़ने देते हैं, उसके बाद उसको छान ले, अपना जो अर्क निकलेगा उसका अपन उपयोग करते हैं, तो ये अपने एक प्रकार का टॉनिक का काम करता है। ये टॉनिक का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम जो किसान भाई क्या करते हैं कि एनपीके ही डालते हैं, उसके अलावा हमारे जो और भी जो पोषक तत्व है हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसका जो अपन ये जो टॉनिक का उपयोग कर रहे हैं ये तुलना के टॉनिक नहीं है। अगर देखा जाए जो बैल फर्टिलाइजर बात करते हैं कि माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो उपयोग किया जाना चाहिए वो इससे आपका कवर हो जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने आने वाले सीजन में हमारे बैतूल जिले के किसानों को संतुलित खाद का उपयोग, प्राकृतिक खेती और बीजोपचार और एक ही फसल ना बोकर विविध प्रकार की फसलें बोने के लिए सलाह दी, ताकि किसानों को जोखिम कम रहे। आप हमारे किसान भाइयों को आपने ये सलाह दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।
0: धन्यवाद किसान भाई।
2: इस भेंटवार्ता के बाद लीजिए सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

इस प्यारे से लोकगीत के बाद किसान भाई आज चर्चा करते हैं श्रृंखला खेती किसानी की। जैसा कि हमारे बुआई का सीजन आने वाला है और हम देखते हैं कि हमारे जिले में किसान भाई लगभग सोयाबीन और मक्का की ही खेती करते हैं, तो सोयाबीन और मक्का के अन्य विकल्प भी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सजेस्ट किए गए हैं कि हमारे जिले में सोयाबीन हम देख रहे हैं कि लगातार विगत वर्षों में खराब होते जा रही है और किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना पड़ रहा है। तो इसके विकल्प ये है कि आप तिल की खेती कर सकते हैं, ये भी एक तिलहनी फसल है। आप मूंगफली की खेती भी कर सकते हैं, मूंगफली का भी एक बड़ा रकबा हमारे बैतूल जिले में अच्छा है और अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसकी भी नई नई अच्छी प्रजातियां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो अगर आप तिलहनी फसलों में जाते हैं तो तिल, रामतिल और मूंगफली की खेती करें। साथ ही अब जो उर्वरक पर प्रतिबंध शासन द्वारा लगाया गया है, तो हम किसान भाइयों से अपेक्षा करेंगे कि वे अपने खेत को प्राकृतिक रूप से उर्वरा शक्ति बढ़ाने

के लिए सन और ढेचा की जो फसलें होती है, इन फसलों को भी अपने खेत में स्थान दें। अगर आपके पास बड़ी जोत है तो कम से कम 1 एकड़ में इन खाद वाली फसलों का उपयोग करें। आधी फसल को आप खेत में मिलाएं और आधी जो फसल आपके पास बचती है उन फसलों से उनका बीज उत्पादन लें, ताकि आने वाले समय में या ग्रीष्म काल में फिर से इन फसलों को हम दूसरे रकबे में लगाकर वहां पर हम हमारी मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाएं, इन फसलों को लगाएं, इन फसलों को वहां पर लगाकर फिर मिट्टी में मिलाएं, ताकि ऐसा करने से जो हमारे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम हो रही है, तो इन खाद वाली फसलों से एक अच्छा ऑप्शन हमें मिलता है कि हमें ऑर्गेनिक कार्बन इन हरी खाद की फसलों से मिलता है। तो हम यही आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप अपने खेत में जैविक जो भी खाद वाली फसलें हैं उनको कम से कम पूरे खेत के 20% हिस्से में लगाएं, तो आपको अपने आप खाद का ऑप्शन मिलने लगेगा और आपकी मिट्टी की उर्वरता, जैविक कार्बन बढ़ने लगेगा और आपको उत्पादन अच्छा मिलने लगेगा। आइए किसान भाइयों, आज के मंडी भाव जानते हैं। कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त जो हमें मंडी भाव मिले हैं, इसमें सोयाबीन का जो आज अधिकतम रेट रहा 7100 रुपये रहा, न्यूनतम 5700 रुपये, और जो प्रचलित भाव रहा 6600 रुपये रहा। इसी प्रकार चना का जो उच्चतम भाव 5651 रुपये रहा, प्रचलित 5501 रुपये रहा और न्यूनतम 4800 रुपये रहा। इसी प्रकार मक्का की बात करें तो मक्का आज अधिकतम 2300 रुपये कुंटल बिका है और प्रचलित 1999 रुपये, और जो न्यूनतम भाव मक्का का रहा 1722 रुपये रहा। इसी प्रकार गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं जो रहा न्यूनतम 2200 रुपये, उच्चतम 2475 रुपये और प्रचलित भाव 2340 रुपये रहा। इसी प्रकार हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों जो है 6001 रुपये न्यूनतम भाव, 7600 रुपये उच्चतम भाव और 6801 रुपये प्रचलित भाव रहा। इसी प्रकार मूंग की बात करते हैं तो मूंग 4001 रुपये न्यूनतम, 7350 रुपये उच्चतम और 6950 रुपये प्रचलित भाव रहा। इसी प्रकार मसूर की बात करते हैं तो मसूर 6000 रुपये उच्चतम बिकी है, 4800 रुपये न्यूनतम और 6000 रुपये प्रचलित भाव रहा। इसी प्रकार तुअर की बात करते हैं तो 5400 रुपये तुअर न्यूनतम भाव बिकी है, 6500 रुपये उच्चतम बिकी है और 6500 रुपये ही इसका प्रचलित भाव रहा। उड़द की बात करें तो उड़द 5501 रुपये न्यूनतम, 7226 रुपये उच्चतम और 6450 रुपये प्रचलित भाव रहा। ये भाव हमें मंडी बोर्ड से प्राप्त हुए और हमने आपको बताया। अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, कल हम इसी कार्यक्रम को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दो। राम राम, जय किसान, जय जवान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा आकाशवाणी का। ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। सभी सुनने वालों को ज्योति मालवी का नमस्कार।

शुरुआत की जाए नगीना फिल्म के इस गीत की, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, बोल आनंद बख्शी के, और ये गीत इन सभी श्रोताओं के लिए। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ की श्रोता हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक मजनू का टीला से। दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रिंगिनी छत्तीस।

शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता हैं, तिलोक चंद्र वर्मा, भगवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, मास्टर समर, राज, आर्यन, बेबी, आरोही, ईशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और इनका पूरा परिवार।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। अगले श्रोता शामिल हो रहे हैं जिला मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश ग्राम से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और इनका पूरा परिवार। इन श्रोताओं के लिए 20 साल बाद फिल्म का ये गीत। आवाजें मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

राकेश होता है, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, अमनदीप और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा और इनके साथी।

कि संदेश आपके गीत इस कार्यक्रम के अगले श्रोता शामिल हो रहे हैं। नागचंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक और मोहम्मद उमर राजेंद्र कटारे भाजपा छत्तीसगढ़ से श्रोता हैं, सोहन जोशी और पायल जोशी।

भुवनेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता हैं पीएस नावकर निर्मला विशाल मलकापुर से हैं नारायण इंगले सोपान ताड़े आशीष मुरेकर और इनके साथी

जिला खरगोन, मध्य प्रदेश के श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप।

आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से, और श्रोता शामिल हुए हैं मुन्नौर से आदिल कुमार तस्दीक अली मुजफ्फर अली। फिल्म का नाम है इतिहास।

इतिहास फिल्म का ये गीत है आवाजें ए हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की। और अभी शामिल हुए हैं श्रोता बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, महेत्री, अंजलि कारवा, बालासाहेब, रामनिवास और धनंजय।

अगले श्रोता शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश।

शिक्षक फिल्म का गीत है अभिजीत की आवाज। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना और हर्षित।

अभिजीत और चंद्रा दीक्षित के गाए इस गीत के साथ ही आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम साज और आवाज। कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं चितचोर फिल्म का गीत, जिसमें संगीत रविंद्र जैन का।

और आइए अब सुनते हैं खुशबू फिल्म का ये गीत, संगीत आरडी बर्मन साहब का। कार्यक्रम है साज और आवाज।

इस गीत के साथ ही सांस और आवाज कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन नीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात द्वित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात द्वित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोरितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे

0: प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारे रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी के इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ तकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने

0: इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूंगे। देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनीति को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़

0: पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यानी इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

थोड़ी सी बेवफाई। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का दो गाना। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे। गीत को लिखा था गुलजार साहब ने और धुन बनाई थी खयाम ने। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में है। ये फिल्म है शर्मिली। गीत रचना नीरज की और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: से खुद से हम।
1: किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था शर्मिली। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। मदन मोहन का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत।

0: सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का निछाना, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह आवाज़ है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है प्यार का मौसम, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन हैं।

ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था प्यार का मौसम। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा की रचना, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है हाथ की सफाई।

यह आवासीय लता मंगेशकर की फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी में, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ पाऊंगी मैं तुम्हें?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार है गुजरे जमाने की जानी मानी ऐसी अदाकारा जो है बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी।
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कवाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही है। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थी। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। अब सुनिए फिल्म शारदा का

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गई और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बिमल रॉय, गुरुदत्त, कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी।
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ
0: बेचारा
1: अच्छा।
0: जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी। दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आई, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गयी इस फानी दुनिया से, दे गयी फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थी, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। सभी सुनने वालों को ज्योति मालवी का नमस्कार।

आपके मीत ये गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से, और अगले श्रोता शामिल हो रहे हैं धुर्रा बांधा भाटापारा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। इन श्रोताओं के लिए पेश है आशा भोसले की आवाज में ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

बैतूल केंद्र से। अगले श्रोता शामिल हुए हैं जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल शुभ प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल।

ये अगला गीत यादों की बारात फिल्म से आशा जी और किशोर दा की आवाज़ों में इन श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फोगेरा बाड़मेर राजस्थान के श्रोता हैं कल्याण सिंह राजपुरोहित और चीकू राजपुरोहित।

लीना जगताप, ममता, शोभा, पीहू, अहाना, एंजल और इनका पूरा परिवार भीमनगर आमला बोड़खी से श्रोता हैं। इन श्रोताओं के लिए हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत

0: इस गीत के साथ ही आपके मितीय गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10:25 होने को हैं। निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष, जन विश्वास 1 और 1/11, आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियाज न्यू एंटी टेरर डॉक्ट्राइन। इंटरव्यूअर इज डॉक्टर श्रीराम चौली।

समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी

0: ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance,

0: Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Mathum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की सभा में हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे प्रातः 5:55 पर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।